सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज शनिवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, आपको अवगत करा दें आज के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भगवान बुद्ध के सुविचार, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग, जो केंद्रित है गोपाल कृष्ण गोखले पर। 8:30 बजे कार्यक्रम होगा इतिहास के पन्नों से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है रानी दुर्गावती के युद्ध के इतिहास पर। सुबह 9 बजे योग संवाद, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री राम की वैराग्य दशा। साढ़े 9 बजे सुनिएगा भारत विभूति, जो केंद्रित है पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर। 10 बजे परिक्रमा, 10:30 बजे आजाद हिंद, जो केंद्रित है महाराणा प्रताप पर। 11 बजे कार्यक्रम होगा सुर सागर, जो केंद्रित है रीता तिवारी के बुंदेली गायन पर। 11:30 बजे युग प्रवर्तक विवेकानंद और दिन में 12 बजे तराने आजादी। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। हिंद इन्हें शत शत नमन करता है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भगवान बुद्ध के सुविचार।

दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें और पवित्र विचार क्यों ना सुन लें, वे आपका कभी भी भला नहीं करेंगे जब तक आप उन पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए कभी भी अहंकार ना करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वो व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 106 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं विश्वेदेवा, और छंद है जगति और त्रिष्टुभ।
3: इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि मूतये मारुतम शर्धो अदितिम हवामहे, रथम न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन। हम सभी अपने संरक्षणार्थ इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुदगण और अदिति का आवाहन करते हैं। हे श्रेष्ठ धनदाता वसुओं, आप जिस प्रकार रथ को दुर्गम मार्ग से निकालते हैं, वैसे ही संपूर्ण विपदाओं से हमें पार करें। त आदित्या आगता सर्वतातये भूतदेवा वृत्र तूर्येषु शंभुवः, रथम न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान् नो अहसो निष्पिपर्तन। हे आदित्य गणों, आप सभी हमारे अभीष्ट यज्ञ में आगमन करें। असुर संहारक युद्धों में हमारे लिए सुखप्रद हो। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, सभी विपदाओं से हमें आप उसी प्रकार पार करें जैसे दुर्गम मार्ग से रथ को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। अवंतु नह पितरह सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे रिता वृधा, रथम न दुर्गाद् दसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन। श्रेष्ठ प्रशंसनीय सभी पितर और सत्य संवर्धक देव माताएं हमारी संरक्षक हों। हे श्रेष्ठ दान दाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने की तरह ही सभी संकटों से हमें बाहर निकालें। नराशंसम वाजिनम वाजयन्निहि क्षयद्वीरम पूषणम सुम्नैरीमहे, रथम न दुर्गाद् दसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलवान वीर की शक्ति को संवर्धित करने वाले वीरों के स्वामी पूषा देव की हम श्रेष्ठ मनोभावनाओं द्वारा स्तुति करते हैं। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें सुरक्षित करें। बृहस्पते सदमिन्नः सुगम कृधि शम यो यर्ते मनुर्हितम तदीमहे, रथम न दुर्गाद् दसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन। हे बृहस्पते, हमारे मार्ग सदैव सर्व सुलभ करें। आपके पास जो मनुष्यों के कल्याणकारी श्रेष्ठ सुख प्रदायक और दुख निवारक साधन है, वही हमारी कामना है। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें संरक्षित करें। इंद्रम कुत्सो वृत्रहणम शचीपतिम काटे निबाडह ऋषिरह्वदूतये रथम न दुर्गाद वसवह सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसो निष्पिपर्तन। पाप रूपी कुएं में गिरे हुए कुत्स ऋषि ने शत्रु संहारक और सामर्थ्यवान इंद्रदेव को आवाहित किया। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, रथ को कठिन मार्ग से वहन करने की तरह ही आप सभी पापों से हमें निवृत्त करें। देवैर्नो देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। देवमाता अदिति देव समूह के साथ हमें संरक्षित करें। संरक्षण साधनों से युक्त अन्य देवगण भी आलस्य रहित होकर हमारी सुरक्षा करें। हमारी इस प्रार्थना को मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक आदि देवगण स्वीकार करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त 106 को सुना। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब आनंद लीजिए भक्ति संगीत का दीप्ति के साथ। श्रोताओं, ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि हमारे मन के विकार इससे दूर होते हैं और मन शांत और सरल होता है। आइए हम भी ईश्वर की आराधना करें।

परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सब प्राणियों का जन्म होता है और उसी आज्ञा के अनुसार ही प्रभु के गृह में शोभा प्राप्त होती है, मगर उस आज्ञा का निरूपण नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

वो मनुष्य जिसकी आत्मा सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान कर्म अकर्म और पाप पुण्य से ऊपर उठ चुकी है, उस मनुष्य को किसी भी तरह की रणभूमि में परास्त करना असंभव है।

जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है, जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते।

हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ९०.८ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

किसी एक कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को ये कहते हुए एक कठिन प्रश्न दिया कि जो भी इसे हल कर लेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। एक बच्चे के अलावा कोई भी उसे हल नहीं कर सका। अध्यापक ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया, लेकिन वो छात्र पश्चाताप के कारण रात भर सो न सका। अगले दिन उसने वो पुरस्कार लौटा दिया और ये कहते हुए अध्यापक से माफी मांगी कि मैंने पुस्तक से नकल करके ये प्रश्न हल किया था। इन्हीं जीवन मूल्यों और संस्कारों के बल पर वो एक महान देशभक्त और समाज सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे दुनिया गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से पहचानती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा के विस्तार, सामाजिक सुधार के साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम को 3 दशक तक अपनी ऊर्जा से गति प्रदान की। वित्तीय मामलों की गहरी समझ और उस पर प्रभावशाली बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लैडस्टन कहा जाता है। वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख उदारवादी नेता थे, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को रत्नागिरी के पास स्थित कोटलुक नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराव गोखले और माताजी का नाम वलुबाई गोखले था। एक साधारण से परिवार में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। बहुत कम आयु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। जीवन के इस संघर्ष ने उन्हें कर्मठ और संवेदनशील बना दिया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर से कचोटती रहती थी और भारतीय समाज की दशा देखकर वो अत्यंत विचलित हो जाया करते थे। पिता के असामयिक निधन ने उनके जीवन के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी कर दीं, लेकिन अपने आत्मबल से उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी शिक्षा बाधित नहीं होने दी, क्योंकि उनके जीवन के लक्ष्य बड़े थे। भारत भूमि की सेवा का संकल्प उनके मन में बचपन से ही जागने लगा था।

गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1881 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति गहरे लगाव के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिला करती थी, इसीलिए उनकी शिक्षा में कभी कोई व्यवधान नहीं आया और गोपाल कृष्ण गोखले स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक हुए। शिक्षा को वो किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वो कहा करते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो व्यक्ति को अच्छा नागरिक और राष्ट्र रूपी परिवार का एक उपयोगी सदस्य बनाती है। यही कारण है कि उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन का कार्य किया। यहीं वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। हालांकि आने वाले समय में दोनों की विचारधाराएं अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुईं और तिलक जी ने जहां गरम दल में रहते हुए राष्ट्र सेवा की, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल में शामिल रहे। बावजूद इसके दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव सदा बना रहा। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे से गोपाल कृष्ण गोखले अत्यंत प्रभावित थे। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। ये सोसाइटी लोगों में जागृति और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा पर विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्राध्यापक के रूप में इससे जुड़े। ब्रिटिश सरकार और आम जन के बीच मध्यस्थता हेतु एक सेतु की तरह पूना सार्वजनिक सभा भी गठित हुई थी, जो एक पत्रिका का प्रकाशन किया करती थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। सन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में वो शामिल हुए और इस तरह उनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ चली। उन दिनों अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विकास हेतु किए जा रहे व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए वेल्बी आयोग का गठन किया था। चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की गहरी समझ थी और वो राजस्व तथा बजट आदि के अच्छे जानकार थे, इसलिए वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वो इंग्लैंड भी गए, इसीलिए उन्हें भारत का ग्लैडस्टन कहा गया। इस तरह भारत हर पल उनकी चिंता और चिंतन का विषय बना रहा और राष्ट्र सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा।

गोपाल कृष्ण गोखले सन 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और सन 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए चुने गए। वो दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी से मिले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्या में विशेष रुचि ली और गांधी जी को मार्गदर्शन भी दिया। गांधी जी पत्राचार करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। गोखले जी की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया था। गांधी जी से वो अत्यंत प्रभावित थे। उनके कहने पर ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले जी ने गांधी जी से कहा कि तुम इतने लंबे समय से देश से बाहर हो, इस देश को समझने के लिए तुम्हें पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए और जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती तुम भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी मत बोलना। इस तरह एक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को गढ़ने का काम किया। साबरमती आश्रम की स्थापना में गोपाल कृष्ण गोखले ने आर्थिक मदद भी की थी। युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ने के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके सदस्य आजीवन देश सेवा का वचन लेते थे। गोपाल कृष्ण गोखले अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि वो नरम दल में शामिल रहते हुए राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ने जाति प्रथा और छुआछूत का भी सदा विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्वशासन और सामाजिक सुधारों के लिए लगातार प्रयास किए। बंगाल विभाजन की घोषणा ने स्वदेशी आंदोलन को चरम पर पहुंचा दिया था। ऐसे समय में ब्रिटिश राज को अपने प्रशासन में सुधार हेतु विवश होना पड़ा था। इसी उद्देश्य से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीयों के पक्ष में कई प्रावधान रखे गए। इस मार्ले मिंटो सुधार में गोपाल कृष्ण गोखले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह उन्होंने आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 19 फरवरी सन 1915 को अंतिम सांस ली। गोखले जी के कार्य और उनकी विचारधारा ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी ने कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले गंगा की तरह हैं। जैसे पवित्र नदियों में स्नान करके कोई भी पवित्र हो जाता है, ठीक ऐसे ही थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास की पन्नों से।
2: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों से का सातवां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं और इस बार भी हमारे साथ हैं पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में छुरा भोंका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर दमोह तक पहुंच गया और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े। और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती और दमोह में नरई पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहाँ अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है। वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है तो संघर्षशील लोग होते हैं, लड़ाके उसी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है जहाँ समृद्ध सभ्यता हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य पूर्व की ओर से अधिक सेनाएं या लड़ाके भारत की ओर कूच करते हैं और यहाँ पर अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ये प्रकृति का बेसिक अंतर है। इसी प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि रानी दुर्गावती, ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं रही होगी, पर ये आक्रमण अचानक से हुआ था। दूसरी तरफ आसफ खान लंबे समय से अपनी सेना को संगठित कर रहा था, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। इसीलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
0: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी, आगे बढ़े हम और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा, और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खान आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने?
1: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी तो उन्होंने चार पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
0: जी,
1: और उधर आसफ खान को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहाँ हो गई।
0: जी,
1: तो आसफ खान को पता नहीं चल पा रहा था।
0: जी,
1: उसने कुछ समय तो इंतजार किया।
0: हाँ,
1: और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
0: जी,
1: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2,000 से 3,000 की सेना रानी के पास थी।
0: जी हाँ।
1: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
0: जी हाँ।
1: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी, लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी
0: जी।
1: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
0: वाह।
1: कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को बुलाया और उसे संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहाँ पर करो और मरो की स्थिति है, कोई जाना चाहे तो वापस जा सकता है,
0: जी।
1: लेकिन रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने बड़ा काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एकमत होकर युद्ध करने का संकल्प लिया और एकजुट होकर यह स्वीकार किया कि इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा सामूहिक रूप से सभी उसके भागीदार होंगे,
0: जबकि सब जानते थे कि अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।
1: बिल्कुल। अब नरई में रानी की सेना तैयार थी। उधर से सूचना मिल चुकी थी कि आसफ खान की सेना के फौजदार नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद अपनी सेना के साथ नरई के जंगलों में पहुंच रहे थे
0: जी।
1: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा
0: जी।
1: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
0: अच्छा।
1: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
0: तो मतलब कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति में के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
1: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं, जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
0: हाँ।
1: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
0: तो पूजा जी, एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे मार गिराया था।
1: जी हाँ, ये देशज तकनीक कह सकते हैं इसको
0: जी,
1: कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस तकनीक से लड़ना जानते थे
0: जी।
1: और कई सारे युद्ध उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि लड़े और जीते भी।
0: ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आख्यान कुछ लोकगीत गाए गए रानी दुर्गावती जी की स्तुति में और ये वहां पर बहुत काम आए युद्ध में, वो क्या थी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
1: हम अभी तक जब भी सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार में कई सारे लेखक हैं
0: जी।
1: हमने अबुल फजल का नाम सुना, फरिश्ता का, बदायूनी का, बहुत सारे नाम हैं। पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष

0: उनसे इतिहास लिखवाया जाए
1: जी।
0: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता, पर हाँ अगर हम
1: लोग
0: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं, जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
1: यश को जो पहले जस कहते थे
0: तो खूब सारे आख्यान जस गीत हम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
1: वाह,
0: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी
1: जी।
0: तो गड़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी
1: जी।
0: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है
1: जी।
0: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है, और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो
1: जी।
0: तो एक सेला लोकगीत है
1: जी,
0: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है
1: जी।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो, राजा दलपत के रानी हो, रण चंडी कहाए, डगर डगर माँ डोलो हो, गण मंडला बचाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए।
1: वाह क्या बात।
0: तो इसका अर्थ यह है कि जैसे माँ दुर्गा अपनी संतानों की रक्षा करती है, महारानी दुर्गावती वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करती है। वो रण में तलवार लेकर जूझ पड़ती है, वह रानी दुर्गा कहलाती है
1: जी।
0: वह राजा दलपत की रानी है, रणचंडी कहलाती है। डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है, माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है, माँ दुर्गा अपने हाथों में तलवार लिए रणचंडी हो गई है।
1: वाह पूजा जी क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप हमने कई बार जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
0: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो समाज का आईना नहीं है,
1: वो
0: अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में
1: जी।
0: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है
1: जी। हाँ।
0: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो,
1: हाँ,
0: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है
1: जी।
0: और जनता उसे कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए
1: जी।
0: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
1: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियां कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति, या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जरूर। अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढें तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी
1: जी?
0: अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया,
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई, तो इस पर चार पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो
1: जी।
0: गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन माँ सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है
1: जी।
0: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियों, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है
1: जी।
0: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है
1: जी।
0: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं
1: जी।
0: और उनके केस लंबे हैं
1: जी।
0: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है,
1: बिल्कुल।
0: और दमक दमक रानी गर्जे, फौजी दे ललकार, इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है
1: जी।
0: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
1: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है,
0: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो, ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
1: याद
0: है।
1: किया जाता है, बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है, लोकगीतों में सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गूंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
0: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है
1: जी।
0: इस गीत की चार पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर फौजी सबे तैयार।
1: वाह क्या बात।
0: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया
1: जी।
0: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं
1: जी।
0: उनकी आंखों से काय अखियन से बरसे अगिया
1: जी,
0: आंखों से आग बरस रही है, और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
1: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है, जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है, जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं, लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
0: जरूर।
1: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। अगला कार्यक्रम एक छोटी सी अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
3: जी,
2: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है, वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
3: जी।
2: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: आप इसमें देखिए, जब द्वारपाल जाता है राम जी को बुलाने के लिए
2: जी,
3: तो रामचंद्र जी के भवन में जैसे ही वो द्वारपाल पहुंचता है, देखता है कि राम जी अपने भवन में अमन होकर बैठे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे जो भ्रमर होता है रात को कमल में बंद होकर उदास हो जाता
2: जी, जी,
3: है ना, उसकी दुनिया सिमट जाती
2: जी,
3: है
2: जी, जी, जी।
3: ऐसे ही रामचंद्र जी जो है, जो पूरा जगत जो कहते हैं ना, मैं जहाँ उस ब्रह्म का दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें है, वो एक उदासीन मन के साथ अमन की स्थिति में बैठे हैं। अब कहते हैं कि यात्रा से लौट के आने के बाद उनका मन उदास हमेशा रहता है, और जो वो वैराग्य की स्थिति बता रहे हैं वो देखिए, कहते हैं कि वे बार बार खिन्न हो उठते हैं और उनके आंख आंसू से भर जाते हैं।
2: अच्छा।
3: जब जगत देखते हैं तो रो पड़ते हैं
2: जी, जी, जी।
3: जिसको कबीरदास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है, आदमी क्या करने आया था, क्या कर रहा है, अवलो नसानी अमना नसानी जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
2: अच्छा,
3: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
2: अच्छा।
3: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
2: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है, उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री राम?
3: कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
2: जी,
3: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है, तो अकारण वो हंसता है, है ना,
2: बिल्कुल
3: है ना? लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
2: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
3: और विपत्तियां घेर लेती हैं।
2: जी, जी,
3: संपत्ति
2: जी।
3: आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आती है। जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है, और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है ना।
2: हाँ।
3: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
2: जी, जी, जी।
3: और तो, इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
2: हाँ, हाँ, तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
3: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
2: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
3: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कहिए। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
2: बहुत सुंदर।
3: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
2: बल्कि
3: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
2: जी,
3: और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी। पत्नी कह रही है।
2: हा, हा, हा।
3: तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखते
2: हैं। प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
3: रोमांच हो रहा है,
2: पहले भी मैंने सुना है। रावण ऐसा कहता है,
3: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण मतलब और
2: कैसा होगा,
3: कैसा होगा
2: कि वो उसका स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री
3: माँ नजर आती है। तो अगर
2: ये राम तत्व है,
3: तो ये राम तत्व है। तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है?
2: जी,
3: तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
2: अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
3: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए, सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
2: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
3: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्होंने सुन लिया।
2: अच्छा,
3: है ना। तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है, है ना, कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया।
2: हाँ।
3: वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया
2: जी।
3: तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से, जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्म रक्षति रक्षता, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही हैं? शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं ना कहीं मिटने का जो भय होता
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो कह सकते हैं। तो वो कहते हैं क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता। तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना मुदित हो गया, आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है, परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझ में और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया, हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं कह सकते हैं, क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता। जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, क्योंकि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहिं जगत, केहि संग करहिं विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सी राम में सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुगुपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृष्ण दिखाई दे रहा है

0: आप में है। भागवत कथा में हम कहते हैं ना कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य जो सत्य का अनुसंधान, जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदर।
1: जी। तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
0: जी,
1: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
0: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके
1: तो
0: आप दुखी हो रहे हैं,
1: पिता की चिंता वो
0: जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है और ये वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हृष्टपुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
1: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण है, चूंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना, तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है एनलाइटेंड, कहते हैं कि एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई, दिव्यता ने उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
1: जी।
0: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोक व्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
1: जी,
0: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय, कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है? बुद्ध पुरुष।
1: अच्छा।
0: जी, और ये वेद कह रहा है, ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल, कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये स्थिति उनकी होगी।
1: तो ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी।
0: जी।
1: दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा। तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
0: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है, विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
1: जी।
0: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य, ये दो शब्द आते हैं, ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही दो रूप दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये दोनों स्थिति नहीं है, लोकव्यापी ये सगुण निर्गुण का जो ब्रह्म तत्व है उसका ये वास्तविक ज्ञान नहीं है।
1: अच्छा।
0: और यही जो है दुख की परंपरा का उत्पादक है, जो बड़ी कठिनाई से नष्ट होता है। इतना आसानी से नष्ट नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आदमी जब कहीं किसी कर्म से उबता है तो किसी दूसरे कर्म का चुनाव करता है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो अंततः देखें तो कर्म से कर्म को काटने का प्रयास करता है, जबकि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अनासक्त भाव से करना है, जिसके लिए गीता भी योग शास्त्र का ग्रंथ है और वो भी कहती है। तो राम जी से ये कहा जा रहा है कि आप जो ये देख रहे हैं जगत को, ये जगत में अनासक्त व्यवहार करके आप जीवन मुक्त हो करके यहाँ सारे अपने दायित्वों का निर्वाह करें जिसके लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, और प्रकृति ने जिन जिन चीजों के लिए आपको यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना है। अब धर्म की संस्थापना के लिए कई बार लोग कहते हैं कि धर्म भी एक बंधन है, कई लोग धर्म से बंध जाते हैं और कहते हैं यही धर्म है जो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखें कोई भी चीज अगर अपने अस्तित्व में है तो अपने धर्म के साथ है, इसलिए है ना, और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, जो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही वो सांस लेने में संकट में हों। कितने मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
1: इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है
0: जी बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
1: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
0: अच्छा, भोग के साधनों,
1: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो। क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में हैं, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं, लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
1: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई,
0: कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहाँ, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषयक आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता। संसार में जो आस्थावान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते। तो राम जी उस तरह के मैं देखा, और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
1: बिल्कुल,
0: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था, है ना, वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए। आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं, जंगल में तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है, और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
1: और श्रीराम कह रहे हैं कि आपत्तियों का साधन,
0: ये कहते हैं
1: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसी क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं। अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
0: नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है। और राम जी ने तीर्थ यात्रा के दौरान यही चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति है। और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन। आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना, तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें, ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का, और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे हैं,
1: बनाकर बैठे हैं, और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
0: लगाए हुए हैं। जी जी,
1: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है,
0: जी जी,
1: तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे।
0: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जाने और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिए, बंधन में ना जिए। वो कहते ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है, वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सकरी हैं, कहीं बहुत विशाल रूप है, और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
1: जी जी,
0: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का,
1: जी जी जी,
0: और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
1: जी जी, तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है, और भी उनके मन में

उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से, नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और आज भारत विभूति के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम बात करेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी पंत की। श्रोताओं, इस तारतम्य में आज मेरे साथ हैं मेरे रेडियो मित्र
3: दीपेश
2: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, भारत विभूति में आज बहुत ही खास दिन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हिमालय की गोद में अपनी आंखें खोली और जिनके इरादे उसी हिमालय जितने अटल और अडिग रहे। उत्तराखंड की वादियों से निकला एक ऐसा लड़का जो पहले एक होनहार वकील बना, फिर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, फिर उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री और आखिरकार भारत का गृह मंत्री, और इन सब से भी बढ़कर वो थे एक सच्चे इंसान जिन्होंने कभी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवन गाथा। साथियों, ये नाम केवल दो शब्द का नहीं है, ये तो एक पूरा युग है, एक संघर्ष है, एक विचारधारा है। ये नाम उन लाखों लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रिटिश दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मुक्ति की राह तक रहे थे। सोचिए, एक युवक जिसकी वकालत चमक रही थी, जिसका भविष्य उज्जवल था, जिसके पास सुख सुविधाएं और समृद्धि के सारे द्वार खुले हुए थे, उसने ये सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, माँ भारती की पुकार। उस पुकार को सुनकर उन्होंने अपनी कलम और मुकदमे की फाइलें एक तरफ कर दी और थाम लिया तिरंगा।
3: जेल की अंधेरी कोठरियां उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां उनके इरादे को नहीं झुका सकी, क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हो, उसे न ठंड सताती है, न भूख, न कारागार। और जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस विशाल राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। भारत वर्ष की पावन धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, त्याग और कर्म निष्ठा से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम आभा से भर दिया। इन्हीं दिव्य विभूतियों में से एक थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वे उत्तर भारत के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: श्रोताओं, पंत जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया। वो एक ऐसे राजनेता थे जो जनता के दिलों में बसते थे, जिनकी सरलता, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मित्र और विरोधी दोनों ही मानते थे। भारत सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 1957 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से अलंकृत किया। ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। पंत जी का जीवन और कार्य आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है।
3: पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वायु और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में पले बढ़े गोविंद वल्लभ में बचपन से ही उस पर्वत सी दृढ़ता और स्थिरता विद्यमान थी। उनके पिता श्री मनोरथ पंत एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य। माता का नाम गोविंदीबाई था, जो एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। माता पिता दोनों ने बालक गोविंद में संस्कारों के बीज बचपन से ही बोए। माता से उन्हें करुणा, सेवा भाव और धैर्य की शिक्षा मिली, तो पिता से अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के गुण प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही गोविंद वल्लभ एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। वे पढ़ाई में अपनी आयु के अन्य बालकों से सदैव आगे रहते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। गणित,

कुछ श्रोताओं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद पंत जी उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज चले गए। वहां उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय उत्तर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यहां उनका परिचय

0: और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय हिस्सेदारी की। इलाहाबाद उन दिनों भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और कई बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन संपर्कों ने पंत जी की राजनीतिक चेतना को और भी अधिक पैना कर दिया।
1: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री LLB प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। उनकी वकालत का एक विशेष गुण यह था कि वे सदा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। कमजोर और गरीब लोगों के मुकदमे वे प्रायः निशुल्क लड़ते थे। उनकी तर्क शक्ति और वाक्पटुता के सामने बड़े बड़े वकील भी परास्त हो जाते थे। कुछ ही वर्षों में वे काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाने लगे। परंतु वकालत की समृद्धि और सुख सुविधाएं उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उनके भीतर देश सेवा की ललक प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पंत जी ने बिना किसी दुविधा के अपनी सफल वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की पुकार पर उठ खड़े हुए। यह उनके त्याग और देशभक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वे सफल रहे।
0: फिर सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पंत जी ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने जनजागरण का काम किया और हजारों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। इस कुप्रथा के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सामान को बिना किसी पारिश्रमिक

0: जनता से की। इसके फलस्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल की कठोर परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु उनकी हौसले को जरा भी नहीं तोड़ सका। कारागार में भी वे अपने साथी कैदियों का मनोबल बनाए रखते और देश की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते। उनकी कई जेल यात्राएं हुईं और हर बार वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आए। उनका यह अटूट संकल्प जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
1: वहीं अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का आह्वान किया। पंत जी ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उन्हें अहमदनगर किले में नजरबंद रखा गया। अहमदनगर किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने 3 साल से अधिक का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वतंत्र भारत के भविष्य की योजनाएं बनाई और अपने साथियों के साथ राजनीतिक विचार विमर्श किया। ये कठिन काल उनके लिए एक अनमोल अनुभव था जिसने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया।
0: सन 1923 में पंत जी पहली बार संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने। विधानसभा में उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा और तेज लेकर आई। वे एक प्रखर और निर्भीक वक्ता थे। उनके भाषण तर्कपूर्ण, तथ्यों पर आधारित और ओजपूर्ण होते थे। उन्होंने विधानसभा में किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। सन 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में भारी बहुमत प्राप्त किया। पंत जी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार और प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, किंतु सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौजूदा सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।
1: 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जब उत्तर प्रदेश के लिए पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो सर्वसम्मति से पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम सामने आया। वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये पद उन्हें उनकी योग्यता, अनुभव और जनप्रियता के चलते मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सन 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत जमींदारों की अतिरिक्त भूमि सरकार ने ले ली और उसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। इस एक कदम से लाखों किसान परिवारों की जिंदगियां बदल गई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे।
0: उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में नए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। उनका मानना था कि शिक्षित नागरिक ही देश की सबसे बड़ी संपदा है। महिला शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में सड़क, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए उन्होंने कई सुधार किए। 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस पूरे कार्यकाल में उनकी ईमानदारी और कुशलता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा।
1: दिसंबर सन 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक था। पंत जी ने इस पद को अत्यंत दक्षता और कुशलता से संभाला। गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन था। देश की आजादी के बाद ये सबसे जटिल और संवेदनशील प्रश्न था। विभिन्न भाषाई समूह अपने अपने राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर हिंसा भड़की हुई थी। पंत जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुशलता पूर्वक कार्यान्वित किया। 1 नवंबर सन 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश में नए राज्यों का गठन हुआ।
0: हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में पंत जी की भूमिका अग्रणी रही। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में जोरदार तर्क रखे और यह सुनिश्चित किया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस निर्णय से अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान कम न हो। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। अनेक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विवादों को उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझा लिया। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से उन्होंने शासन तंत्र को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया। उनके नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता और अधिक सुदृढ़ हुई।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जीवन भर सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयां, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध सदैव अपनी आवाज उठाई। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई नीतियां भी बनाई और उन्हें कार्यान्वित भी किया। वे गांधी जी के इस विचार को मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है और इसे दूर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति और सरोकार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता है। उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए न केवल जमींदारी प्रथा खत्म की, बल्कि कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा।
0: पंत जी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदार बनाने पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछाया गया। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए नए कॉलेजों की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में भी काम किया।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व बहुआयामी और अत्यंत ही प्रभावशाली था। वो शारीरिक रूप से लंबे, चौड़े और तेजस्वी पुरुष थे। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक और दृढ़ता थी। जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो श्रोताओं को बांध लिया करता। उनके भाषण कभी खोखले नहीं होते थे। वो हमेशा तथ्यों और तर्कों पर आधारित होते। उनका सबसे बड़ा गुण था उनकी अटूट ईमानदारी। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनके शासन काल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था और यही कारण था कि जनता में उनके प्रति इतना विश्वास और सम्मान था।
0: सरलता उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। वे एक साधारण कुर्ता धोती में रहते थे। उन्हें आडंबर और प्रदर्शन से आपत्ति थी। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद वे आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बात करते, उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें हल करने का प्रयास करते। उनका कोई भी कार्यालय आम नागरिकों के लिए खुला रहता था। पंत जी का जीवन दर्शन अत्यंत व्यवहारिक था। वे आदर्शवादी थे, किंतु हवा में नहीं जीते थे। उनका मानना था कि देश की सेवा शब्दों में नहीं, कर्म से होती है। वो राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनके लिए राजनीति एक मिशन था, व्यवसाय नहीं। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा। पंत जी साहित्य और संस्कृति में भी गहरी रुचि रखते थे। हिंदी साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। कुमाऊनी लोक संस्कृति और पर्वतीय कला के प्रति उनका प्रेम जीवन भर बना रहा। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वे पुस्तकें पढ़ने के लिए समय निकाल लेते थे।
1: सन 1957 में भारत सरकार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। भारत रत्न की घोषणा होने पर सारे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो खास तौर से जश्न मनाया गया। इस सम्मान को पाकर पंत जी जरा भी गर्वित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक यही कहा कि ये सम्मान उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया। ये उनकी विनम्रता और उनके महान व्यक्तित्व का ही प्रतीक था। भारत रत्न मिलने के बाद भी पंत जी की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उतनी ही सरलता, लगन और समर्पण के साथ अपना काम किया करते। इस सम्मान ने उन पर और अधिक जिम्मेदारियों का भार जो डाल दिया था। उन्होंने देश की सेवा में और अधिक परिश्रम किया।
0: पंडित गोविंद बल्लभ पंत का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम सालों में धीरे धीरे गिरने लगा था। कई वर्षों की जेल यात्राएं, संघर्ष और अथक परिश्रम ने उनके शरीर पर अपना प्रभाव डाला। वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह देते थे, परंतु पंत जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। बीमार होने के बावजूद वो अपने कार्यालय जाते रहे, फाइलें देखते रहे और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करते रहे। उनके सहयोगी और मित्र उनकी समर्पण भावना से अभिभूत होते थे और चिंतित भी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें विश्राम करने की सलाह दी, किंतु पंत जी कहते थे, जब तक देश को मेरी आवश्यकता है मैं विश्राम नहीं करूंगा।
1: 7 मार्च 1961 को ये महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। नई दिल्ली में उनका निधन हुआ और जब ये दुखद समाचार देश भर में पहुंचा तो शोक की एक लहर सारे देश में दौड़ गई। संसद में उनके निधन पर श्रद्धांजलि सत्र आयोजित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के सबसे महान सपूतों में से एक बताया। राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनकी अंत्येष्टि में लाखों लोगों ने उपस्थित होकर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का शरीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके नाम पर कई संस्थाएं, सड़कें, पार्क और भवन बनाए गए हैं जो उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए हैं।
0: इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उनके नाम पर स्थापित है, जो सामाजिक शोध के क्षेत्र में देश की एक प्रमुख संस्था है। उत्तराखंड के पंत नगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका नामकरण उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से किया गया। दिल्ली में उनके नाम पर एक प्रमुख अस्पताल भी है। उनके जन्मदिन यानी 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार इसे राज्य स्थापना दिवस की भावना से जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके जीवन पर निबंध, भाषण और नाटक प्रतियोगिताएं होती हैं। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है।
1: भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक टिकट भी जारी किया है। संसद भवन में उनका चित्र स्थापित है। लखनऊ में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है जो प्रतिदिन लाखों लोगों को उनकी याद दिलाती है।
0: पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक हैं, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, पारदर्शी, प्रेरणादायक और अनुकरणीय। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विश्वास के साथ जिया कि एक व्यक्ति के त्याग और परिश्रम से राष्ट्र का भाग्य बदला जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके सुधार, गृह मंत्री के रूप में देश की एकता को मजबूत करने के उनके अनेक प्रयास, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हिंदी को राजभाषा बनाने में उनकी भूमिका, ये सभी उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर भारत सदा गर्व करता रहेगा।
1: भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। सच्ची राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। सच्ची सफलता व्यक्तिगत लाभ में नहीं है जन कल्याण में है। उनका जीवन इन्हीं मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। आज जब हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हैं तो हमारे मन में एक ही संकल्प उठना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को और अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। पंत जी अमर हैं और जब तक भारत है तब तक याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम भारत विभूति में हम बात कर रहे थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन में थे मैं यानी स्वाति और मेरे सहयोगी
0: दीपेश,
1: और इस कार्यक्रम का लेखन किया था अखिलेश कुमार वर्मा ने। तो इसी के साथ ये रेडियो कार्यक्रम भारत विभूति यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी मित्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान।

अभी आपने सुना शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। शहर के मातृत्व, पेरेंटिंग और भावनात्मक जुड़ाव को केंद्र में रखकर ममता 2026 का आयोजन हर हेल्थ कर रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर हेल्थ की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर ने बताया कि ममता 2026 के तहत फोटोग्राफी प्रदर्शनी 9 और 10 मई को रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी में जन्म के तुरंत बाद मां द्वारा नवजात को पहली बार गोद में लेने जैसे भावुक पलों को तस्वीरों में प्रदर्शित किया जाएगा। रविंद्र जयंती 2026 के अवसर पर राजधानी में संगीत और साहित्य से सजी विशेष सांस्कृतिक संध्या चिरोनू तोन का आयोजन किया जा रहा है। हजार कंठे सम्मेलन रविंद्र संगीत के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और रीवा से आए 100 से अधिक कलाकार सामूहिक वोकल असेंबल प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम रविवार 10 मई को शाम 6 बजे से स्टेट म्यूजियम सभागार में आयोजित होगा। इस विशेष प्रस्तुति में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 17 सुरीले गीतों को कविता के धागों में पिरोकर मंचित किया जाएगा। नर्मदापुरम रोड स्थित ख्याल कला प्रेमियों का ऑडिटोरियम में शनिवार शाम 6:30 बजे सुकून म्यूजिकल इवनिंग आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में भोपाल शहर की संगीत शिक्षा प्राप्त गायिका श्रेया धानोरकर और निधि सरोलकर पारखे अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। हिंदी पत्रकारिता में 200 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को 3 दिनों के राष्ट्रीय विमर्श प्रणाम उद्दंड मार्तंड की शुरुआत भारत भवन में हुई। वीर भारत न्यास और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस आयोजन में पहले दिन 3 चर्चा सत्र हुए। पहला सत्र हिंदुस्तानियों के हित के हेत, दूसरा सत्र डिजिटल समय में टीवी पत्रकारिता, तीसरा सत्र उत्तिष्ट भारत, अंत में वंदे मातरम गीत को तमिल, मलयालम, बंगाली, संस्कृत, उर्दू और फारसी में उमेश तर्कसवार की टीम ने पेश किया। और श्रोताओं, आज आप जा सकते हैं ममता 2026 फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखने के लिए रविंद्र भवन में दोपहर 12 बजे से रात 8:30 बजे तक। साथ ही आप सुकून म्यूजिकल इवनिंग का आनंद ले सकते हैं शाम 6:30 बजे से ख्याल कला प्रेमियों का। इसके अंतर्गत रचना पाठ एवं किताब पर चर्चा होगी ब्रीद एंड बैलेंस होशंगाबाद रोड पर शाम 5:30 बजे से। और अब मौसम पर एक नज़र। मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को शहरवासियों को तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने पूरे दिन बेहाल रखा। सुबह से ही मौसम में चिपचिपाहट महसूस हुई, जबकि दोपहर होते होते सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। स्थिति ये रही कि शाम के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी और चलने वाली हवाओं में भी गर्माहट महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण अब आसमान साफ होने लगा है। बादल हटते ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विभाग ने अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। ऐसे में दिन के साथ रातें भी गर्म बनी रह सकती हैं। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को ये 39.3 डिग्री था, यानी एक ही दिन में तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 25.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो एक दिन पहले 23.2 डिग्री था। शहर में आज भी तेज धूप निकलने की संभावना है, दिन के तापमान में और इजाफा हो सकता है। तो ये थी मौसम की खबरें और अब हमें दी अनुमति, रखें अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: राणा का ओज भरा आनन सूरज समान चमचमा उठा, बन महाकाल का महाकाल भीभाण भाला दमदमा उठा। रण यात्रा करते ही बोले, राणा की जय राणा की जय। मेवाड़ सिपाही बोल उठे, शतबार महा राणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय। जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय।

0: चित्तौड़ भारतवर्ष का एक ऐसा भूभाग है जिसने सदा इतिहास को कुछ बहुत खास कहने का अवसर दिया है। कभी मीरा जैसी भगवत भक्त के गुण गाने का मान दिया है, कभी पन्ना की स्वामी भक्ति की कहानी दी है और कभी राणा प्रताप की देशभक्ति की कथा कहने का गौरव दिया है। उदय सिंह के सुपुत्र के क्या कहने।
1: आकर्षक व्यक्तित्व, लंबा कद, मजबूत गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछों और चौड़े सीने वाले महाराणा के मुख पर इतना तेज था कि उनका प्रभाव उनसे मिलने वाले हर एक शख्स पर तुरंत पड़ता था। कोई भी उनके आभा मंडल से अछूता नहीं रह पाता था। उनके रक्त के हर एक कण में वीरता का वास था और देश प्रेम तो जैसे हर एक सांस में बसा था।
0: राणा के कुल के महान शासक राणा सांगा को कौन नहीं जानता। उन्होंने बाबर जैसे कुशल मुगल सेनापति और शासक से टक्कर ली। राणा प्रताप ने भी अकबर से बैर लिया, पर प्रताप के पिता उदय सिंह बड़े विलासी थे। उनके 18 विवाहों से उत्पन्न 24 पुत्रों में से सबसे बड़े प्रताप को राज्य की बागडोर न देते हुए उन्होंने अपनी प्रिय रानी भट्टियाणी के पुत्र जगमाल को राज्य सौंपा।
1: उदय सिंह के शासनकाल में ही शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर ने कब्जा कर लिया था और राजपूतों का मान सम्मान हाशिए पर था। ऐसे में उदय सिंह की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक था और उस समय राजपूत राजनीति में प्रताप से अधिक सक्षम और योग्य नेता और कोई नहीं दिखाई पड़ता था।
0: प्रताप का बचपन ही राणा सांगा की वीरता की कथाएं सुनते बीता था। ऐसे में वो भी चित्तौड़ का पतन कैसे बर्दाश्त करते। उनकी रग रग में एक ही राग था कि राजपूत का धर्म है देश के लिए जीवन की आहुति देना। बस निश्चय कर लिया कि जो भी हो चित्तौड़ वापस लेकर ही रहना है।
1: और आगे की कहानी इस सुंदर गीत के बाद।

0: उदयपुर से 19 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित गोंगुंदा में प्रताप को 3 मार्च 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने तत्काल प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ का उद्धार न करूं, न तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा, न ही राजमहल में चैन से वास करूंगा और न ही कोमल शैया पर विश्राम करूंगा। और जैसा कि जग जाहिर है, उन्होंने पूरी उम्र मेवाड़ के पर्वतों को, दुर्ग और गुफाओं को ही महल समझा। जंगलों में बंजारों की तरह अपने धर्म और जाति के मान की रक्षा करते हुए पूरा जीवन काट दिया।
1: अकबर के महान सेनापति मानसिंह ने शोलापुर की विजय के बाद राणा प्रताप से भेंट करने का मन बनाया। प्रताप को जैसे ही उनका संदेशा मिला, वे सत्कार के लिए उदय सागर झील तक आ गए। मानसिंह ने प्रताप का अकबर के प्रति दृष्टिकोण बदलने का बहुत प्रयास किया। उन्हें समझाया कि अकबर तो हिंदुओं के हितैषी हैं, उनसे मित्रता करना राजपूतों के मान के अनुरूप ही है।
0: मानसिंह को करारा उत्तर देते हुए राणा ने अपनी प्रतिज्ञा त्यागने से इनकार कर दिया, परंतु मानसिंह को भोजन के लिए

0: राणा के पास शौर्य और तेज तो बहुत था, पर सैनिक नहीं थे। पर फिर भी 13 जून 1576 के हल्दीघाटी के युद्ध में राजपूतों ने मुगल सेना को लोहे के चने चबवा दिए। भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा का प्रिय घोड़ा चेतक बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय संसार से कूच कर गया। राणा दुखी हो गए और उन्होंने पूरी शक्ति से मुगलों के दांत खट्टे कर देने का निश्चय कर लिया।
1: सारी फसलें जला देने का हुक्म हुआ ताकि मुगल सेना अन्न को तरस जाए। पर अब ये हालत थी कि राणा के सैनिक ही भूखों मरने लगे। उसी समय राणा के यहाँ घास की रोटियां पकाई गईं, पर उनकी बेटी की रोटी जानवर ले गया और उसके विलाप से जो पीड़ा राणा को हुई, उसी वजह से राणा ने अकबर को संधि पत्र पहुंचवाया था।
0: पृथ्वीराज अकबर के यहाँ राजकवि था। उससे राजपूतों का झुका सर देखा न गया और उसने वो संधि पत्र झूठा होने की खबर फैला दी। इधर उसने राणा प्रताप को एक ओज से भरी कविता लिखकर अकबर से दोबारा युद्ध करने को उकसाया। आखिरकार स्वदेश प्रेम ने पिता के प्रेम पर विजय पाई। भीलों को एक बार फिर एकत्रित करके राणा ने सैन्य शिक्षा दी और सारे कार्य एक के बाद एक अपने आप राणा के हित में होते रहे।
1: राणा के पास कुछ नहीं था, न राजधानी, न कोई धन, न दौलत। मुट्ठी भर सैनिकों को छोड़ कोई सहायता को भी राजी न था। पर फिर भी राणा प्रताप को अकबर से टक्कर लेने से कोई रोक नहीं सका। और टक्कर भी कैसी कि इतिहास अपनी धुरी पर चलना छोड़ मुंह बाए बस देखता रह गया और वीर राणा प्रताप ने अकबर तक पर अपना प्रभाव छोड़ा। धन्य है वो माँ और महान है वो धरती जिस पर राणा प्रताप जैसे उज्जवल चमकीले तारे ने जन्म

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे बघेली गायन। कलाकार हैं रीता तिवारी और उनके साथी।

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना श्रृंखला के तहत।
1: मैं रीवा से आई हूँ और बघेली प्रस्तुतियाँ कुछ लेकर क्रमबद्ध कि जन्म से लेकर विवाह तक के जो भी संस्कार हैं, और यहाँ मंच के माध्यम से सांस्कृतिक समिति और जनजाति संग्रहालय और उपस्थित सभी सम्मानित का वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है तो पहले गणेश वंदना की जाती है।

सियावर रामचंद्र की जय हो। और जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो कुआं पूजन का भी एक गीत है, जब कुआं पूजने जाते हैं तो गलहाई गीत है ये।

और जब हमारे यहाँ व्रत बंद होता है तो गांव की भाषा में बरुआ कहा थे बघेली में, तो बरुआ में जब बरुआ रिसाए जहाँ लागत होते या गलिहाई गाना गावा जाता है,

और व्रतबंध के बाद शादी होती है, जब शादी का ये गीत है बेलनहाई, जब पूरी उड़ी बेला थे शादी के टाइम में, तो यह गाना गावा थी।

और जब हमरे यहाँ काज होता तब 15 दिन पहले भिनसरहा उठ के और सब लेडीजें गाँव में लगती हैं सुहाग 4 बजे तड़का, कहा था कौआ न बोला गाँव में के चाहिए सुहाग, तो वह सुहाग की प्रस्तुति है आप।

और फिर बहुत ही मर्मित गीत है ये। इसको गाने से मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि ये बिटिया की विदाई का गीत है और आप सभी समझ सकते हैं कि एक बच्चे को जब विदा की जाती है तो कैसा लगता है। अंजलि है ये हमारे यहाँ बघेली की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने जब डेट्रॉइट से विदा ली तो वहां लौटने की बात उनके मन में बिल्कुल न थी, परंतु घटना चक्र ऐसा घूमा कि 2 सप्ताह बाद ही 9 मार्च को वे पुनः वहां आ पहुंचे। 9 मार्च के डेट्रॉइट जनरल में छपा था कि हिंदू सन्यासी विवेकानंद शिकागो से आज रात डेट्रॉइट लौटेंगे और श्री पामर का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। वे ओपेरा हाउस में भारत में पश्चिमी मिशनरी विषय पर व्याख्यान देंगे।
1: लगभग हजारों श्रोताओं ने ये व्याख्यान सुना था। डेट्रॉइट ट्रिब्यून में इसका विवरण प्रकाशित हुआ।
2: स्वामी जी ने सर्वप्रथम भारत की सामाजिक अवस्था का वर्णन किया, तत्पश्चात उन्होंने स्पेन व पुर्तगाल से आने वालों की ध्वंस लीला का उल्लेख किया। इसके बाद आए अंग्रेज मिशनरी, परंतु वे भारतवासियों से मेल जोल न रखकर अपने अभिजात्य वर्ग की रक्षा में व्यस्त रहे और गरीबों की अन्न और वस्त्रहीनता का फायदा उठाने लगे। उन्होंने और भी कहा, अधिकांश मिशनरी भारतीय शास्त्रों के साथ अपरिचित, अर्धपरिचित तथा अपने कार्य के अनुपयुक्त हैं। वे सच्चे धार्मिक मिशनरी के विरोधी नहीं थे, परंतु ऐसे निस्वार्थ धार्मिक मिशनरी हैं कहाँ। वे तो आजीविका के रूप में धर्म प्रचार करने जाते हैं, और इन राष्ट्रों के बारे में चर्चा करनी हो तो कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने पृथ्वी पर खून की नदियां प्रवाहित की हैं। उन्होंने और भी कहा कि सभी धर्म मूलतः सत्य हैं, अतः मिशनरियों को चाहिए कि वे किसी राष्ट्र या संप्रदाय का गर्व ना पालें, क्योंकि भगवान की संतानों के बीच भला संप्रदाय भेद कैसे होगा।
1: ये व्याख्यान देने के बाद स्वामी जी ने स्वयं बड़े संतोष का अनुभव किया था। अगले दिन हेल बहनों को अपने पत्र में उन्होंने सूचित किया,
3: इस समय मैं श्री पामर का अतिथि हूँ। ये बड़े ही सज्जन हैं। परसों रात उन्होंने अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था, जिसमें से हर एक की आयु 60 वर्ष के ऊपर थी। इस मंडली को वे वयोवृद्ध बालक संघ कहा करते हैं। एक नाट्यशाला में मैंने 2.5 घंटे तक व्याख्यान दिए हैं, उनमें ये अंतिम ही सर्वोत्तम था। सुनकर श्री पामर आनंद विभोर थे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर ही मुझे पता चला कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा।
0: इस भाषण के बाद ही वे पास के बे सिटी और सेगिनो नगर का दौरा कर पुनः डेट्रॉइट लौट आए और शनिवार को यूनिटेरियन चर्च में भारतीय नारी विषय पर बोले।
3: भारतीय नारी का आध्यात्मिक आदर्श अति उच्च है। विभिन्न देशों के नारी समाज को उनके अपने अपने आदर्शों के आधार पर विचार करना चाहिए। पाश्चात्य मापदंडों से प्राच्य नारी का मूल्यांकन करना उचित नहीं। पश्चिम में नारी पत्नी है, पूर्व में वो मां है। भारत में सतीत्व का सर्वाधिक सम्मान है। नारी के शरीर से जगदम्बा ही अभिव्यक्त होती हैं।
1: श्रोतागण पाश्चात्य और भारतीय नारियों की तुलना सुनकर अचंभित हो गए। इस प्रकार 30 मार्च तक डेट्रॉइट में बिताकर स्वामी जी इस नगर से विदा हुए, पर बाद में एक बार सन 1896 में पुनः वहां आकर लगभग 2 सप्ताह तक व्याख्यान और कक्षाएं चलाई। उस बार के डेट्रॉइट निवास के बारे में श्रीमती फंकी ने लिखा है,
4: उनके साथ आए संकेत लेखक तथा विश्वस्त गुडविन, विभिन्न परिवारों के निवास के लिए वहाँ पर एक छोटा सा रिचेल्यू होटल है, उसी के एक कमरे में वे लोग रहते थे और कक्षाओं एवं व्याख्यान के लिए बड़ा बैठक खाना उपयोग में लाते थे। तथापि भीड़ के अनुपात में वो कमरा छोटा पड़ता था, अतः अनेक लोगों को लौट जाते देखकर हमें अत्यंत दुख होता था। कमरा, हॉल और सीढ़ी सब लोगों से भर जाता था। उस समय वे केवल भक्ति से परिपूर्ण रहते थे, भगवत प्रेम के ही वे भूखे और प्यासे थे। वे एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद में विभोर हो उठे थे। लगता था मानो स्नेहमयी जगदम्बा के लिए व्याकुलता के फलस्वरूप उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान हुआ था टेंपल बेथेल में। उसके पुरोहित थे राबाई लुई ग्रॉसमन, जो स्वामी जी के बड़े निष्ठावान प्रशंसक थे। उस दिन रविवार था और जनता इतनी अधिक संख्या में आई थी कि हम लोग किसी दुर्घटना की आशंका से भयभीत हो गए थे। धसाधस भरे लोगों की पंक्तियां सड़क तक फैली हुई थी और कई सौ लोगों को लौट जाना पड़ा। स्वामी जी ने वहां उपस्थित अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया था। वहां उनके दिए हुए दो व्याख्यानों का विषय था, पाश्चात्य जगत को भारत का संदेश तथा विश्व धर्म का आदर्श। उनके अति मनोरम तथा विद्वतापूर्ण व्याख्यान हमने सुने। उस रात आचार्य देव को मैंने जिस रूप में देखा वैसा और कभी नहीं देखा। उनके सौंदर्य में ऐसा कुछ था जो इस पृथ्वी का नहीं था।
0: सम्मान तथा सफलता के बीच भी स्वामी जी का वैराग्य किस प्रकार अभिव्यक्त हो उठता था, इसका परिचय उस काल के एक पत्र में प्राप्त होता है।
3: श्री होल्डन आज सुबह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए खूब समझा रहे थे, परंतु मैं थोड़ा सा बोस्टन और न्यूयॉर्क देख लेने को इच्छुक हूं। सच कहता हूं, जो जो मुझे लोकप्रियता मिलती जा रही है और बोलने में आसानी होती जा रही है, त्यों त्यों मैं इससे उब रहा हूं। इन सब व्यर्थ की बातों से भगवान मुझे बचाएं। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को मंजूर हुआ तो मैं बोस्टन या न्यूयॉर्क में विश्राम करूंगा।
0: ठीक इसी समय उन्होंने अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों की सहायता से व्याख्यान कंपनी से नाता तोड़ लिया था। उनके 15 मार्च के पत्र में है,
3: पहले व्याख्यान के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। हॉल का किराया ही था $150। मैंने होल्डन को विदा कर दिया है, एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है, देखें वो अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं।
0: व्याख्यान विषयक अनुबंध रद्द करने के विषय में श्रीमती बर्क ने लिखा है,
4: स्वामी जी जिस समय श्री पामर के मकान में निवास कर रहे थे, संभवतः तभी स्वामी जी का व्याख्यान कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हुआ था। यह अनुबंध 3 वर्षों के लिए हुआ था, परंतु 4 महीनों के भीतर ही वो उन्हें एक बड़ा बंधन प्रतीत होने लगा। संभवतः स्वामी जी के व्यवसायी मित्र ही उन्हें उससे मुक्ति दिलाने में सफल हुए थे, क्योंकि भगिनी क्रिस्टीन के मतानुसार प्रभावशाली मित्रों के हस्तक्षेप के बिना उससे मुक्त होने का कोई उपाय न था। परंतु इस अनुबंध को रद्द करने से उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी ने तब तक अपने भारतीय कार्य के लिए जितना कुछ संचय किया था वो लगभग पूरा ही उन्हें खो देना पड़ा था।
1: ये सारी बातें उन्होंने खुद श्रीमती हेल को लिखी थी। फिर निरंतर आलोचनाओं और आक्रमणों से वे ऊब गए थे। उन्होंने श्रीमती हेल को लिखा,
3: अब तक सब कुछ ठीक है, परंतु पता नहीं क्यों जब से यहां आया हूं मेरा मन बड़ा उदास है। व्याख्यान आदि निरर्थक चीजों से मैं बिल्कुल थक गया हूं। सैकड़ों प्रकार के नर पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है। मैं तुम लोगों को अपने रुचि की बात बताता हूं। मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु मैं गंभीर विचार कर सकता हूं और उसके फलस्वरूप जब जोश में आता हूं तो वाणी के स्फुलिंग निकाल सकता हूं। पर यह होना चाहिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही, फिर वे यदि चाहें तो मेरे विचारों को दूर दूर तक प्रसारित करें। चिंतन करने के लिए मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए और विशेषकर तब जबकि विचार आध्यात्मिक हो। चूंकि स्वाधीनता का यह दावा कि मनुष्य मशीन नहीं है समस्त धार्मिक विचारों का सार है, अतः यंत्र के समान नियम पूर्वक इस चिंतन में अग्रसर होना संभव नहीं। हर चीज को यंत्र के स्तर पर खींच लाने की प्रवृत्ति ही पाश्चात्यों की अपूर्व समृद्धि का कारण है, परंतु इसी प्रवृत्ति ने समस्त धर्म को उनके द्वार से विताड़ित भी किया है। जो थोड़ा सा बचा है उसे भी पश्चिम ने नियमबद्ध कवायद सा बना लिया है। वस्तुतः मैं तूफानी कतई नहीं हूं, बल्कि हूं ठीक इसके विपरीत। मैं जो चाहता हूं वो यहां नहीं है और मैं इस तूफानी वातावरण को और अधिक काल तक सहन करने में असमर्थ हूं। स्वयं पूर्ण बनने का प्रयास करना, तथा कुछ अन्य नर नारियों को पूर्ण बनने में सहायता करना पूर्णता की उपलब्धि का यही मार्ग है। भला करने से मेरा तात्पर्य है कुछ असाधारण मानवों का विकास करना, न कि भैंस के आगे बीन बजाते हुए समय, स्वास्थ्य तथा शक्ति का क्षय करना।
1: व्याख्यान कंपनी के साथ संबंध तोड़ने के मूल्य स्वरूप उन्हें अपना अर्जित प्रायः सारा धन ही त्याग देना पड़ा था। कंपनी उन्हें कैसे ठगती थी उसके बारे में उन्होंने आला सिंगा को 11 जुलाई 1894 में लिखा था।
3: डिट्रॉइट के व्याख्यान से मुझे $900 अर्थात 2700 रुपए मिले थे। अन्य व्याख्यानों में से एक के द्वारा मैंने एक घंटे के अंदर $2500 अर्थात 7500 रुपए कमाए, परंतु मुझे मिले $200 ही। एक धोखेबाज भाषण कंपनी मुझे ठग रही थी, अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है।
1: आपको जानकारी दे दूं कि उन दिनों डॉलर की विनिमय दर 3 रुपए थी।
5: दूसरी बार डिट्रॉइट आकर स्वामी जी पहले श्री पामर के यहाँ, फिर श्रीमती वागले के घर पर ठहरे थे। इस बारे में उन्होंने एक पत्र में मजेदार बात लिखी थी।
3: मैं बूढ़े पामर के साथ आनंद पूर्वक हूँ, वे बड़े विनोदी तथा भले वृद्ध हैं। हाँ, मेरे बारे में सबसे मजेदार बात लिखी है यहाँ के एक समाचार पत्र ने। लिखा है, तूफानी हिंदू यहाँ आ पहुंचा है और वो श्री पामर का अतिथि है। श्री पामर हिंदू हो गए हैं और भारत जा रहे हैं। बस उनकी जिद यही है कि दो चीजों में सुधार होना चाहिए। प्रथम ये कि जगन्नाथ जी के रथ में श्री पामर के लॉग हाउस फार्म में पले हुए फ्रेंच नस्ल के घोड़े जोते जाएं, और द्वितीय ये कि हिंदुओं के पवित्र गौवंश में जर्सी गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। श्री पामर उक्त नस्ल के घोड़ों तथा गायों के बड़े शौकीन हैं और उनके लॉग हाउस फार्म में दोनों का बाहुल्य है। श्री पामर के घर अधिक दिन बिताने से श्रीमती बागले नाराज हो गई हैं, अतः आज उनके यहां लौट आया। वैसे श्री पामर के घर में दिन बड़ी तफरीह में कटे। वे बड़े ही मौजी और हंसमुख आदमी हैं। मेरे चले आने से वे बड़े दुखी थे, लेकिन मैं विवश था।
5: स्वामी जी के पत्रों से ही ज्ञात होता है कि वे मध्य पश्चिम का कार्य समाप्त कर पूर्वी अंचल में जाने के लिए व्यग्र थे। उस अंचल में जाने से पूर्व 23 फरवरी को वे ओहियो प्रांत के आडा शहर में और वहां से डिट्रॉयट लौटकर पुनः 20 मार्च को मिशिगन प्रांत के बेसिटी तथा सेगिना नगर में गए थे।
1: इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी भेंट अमेरिका के लोकप्रिय अक्षयवादी वक्ता इंगरसोल से हुई। उन्होंने स्वामी जी को सावधान कर दिया था कि वे अति साहसी या अति स्पष्टवादी न हो। इसका कारण पूछने पर इंगरसोल ने कहा था,
6: 50 वर्ष पूर्व इस देश में प्रचार के लिए आने पर आपको फांसी से लटका दिया जाता या फिर जिंदा जला दिया जाता। यहाँ तक कि इसके कुछ और काल बाद आने पर भी आपको पत्थर मार मार कर गाँव से भगा दिया जाता।
5: स्वामी जी तथा इंगरसोल के अनुभवों के बीच एक अंतर था। इंगरसोल पूरे धर्म के ही विरोधी थे, जबकि स्वामी जी स्वयं आस्तिक, ईश्वर प्रेमी तथा ईसा मसीह के प्रति असीम श्रद्धावान थे। इंगरसोल अतीन्द्रिय सत्य में अविश्वासी थे, जबकि स्वामी जी विश्वासी थे। इंगरसोल धर्मध्वंसी थे, जबकि स्वामी जी केवल संकीर्णता एवं पाखंड के विरोधी थे। अतः स्वामी जी के भाग्य में विरोधी के साथ समर्थन भी यथेष्ट जुटा था। एक घटना के द्वारा इन दोनों के बीच के पार्थक्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। एक कक्षा के श्रोताओं को स्वामी जी ने बताया था,
3: एक बार इंगरसोल ने मुझसे कहा था, मेरा विचार है कि संसार से जितना अधिक संभव हो लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। संतरे को निचोड़कर जितना अधिक हो सके रस निकाल लेना होगा, क्योंकि इस जगत के अलावा अन्य किसी लोक के अस्तित्व के बारे में हम निश्चित नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया, इस जगत रूपी संतरे को निचोड़ने की मैं आपसे अच्छी प्रणाली जानता हूं और उससे मुझे रस भी ज्यादा मिलता है। मैं जानता हूं कि मैं मर नहीं सकता, अतः मुझे रस निकालने की हड़बड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है, अतः आराम से निचोड़ता हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं, स्त्री पुत्रादि तथा विषय संपत्ति का कोई बंधन नहीं है, अतः मैं समस्त नर नारियों से प्रेम कर सकता हूं। सभी मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं। मनुष्य को भगवान समझकर उससे प्रेम करने में कितना आनंद है। अपने संतरे को इस प्रकार निचोड़कर देखिए, इससे आपको 10,000 गुना अधिक रस मिलेगा। रस की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी।
5: स्वामी जी और भी एक मजेदार घटना सुनाया करते थे। उन दिनों वे व्याख्यान देने में लगे हुए थे और केवल एक बैग साथ लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा करते रहते थे। विभिन्न स्थानों के लोगों में स्वामी जी के व्याख्यान सुनने का आग्रह होने पर भी उनकी सुख सुविधा पर ध्यान देना सर्वदा संभव नहीं हो पाता था। इसी समय एक बार वे मध्य पश्चिम के एक छोटे से नगर में व्याख्यान देने पहुंचे। उस समय वे बड़े ही थके हुए लग रहे थे और थोड़ा विश्राम कर लेना उनके लिए आवश्यक था। स्वागत समिति के सचिव ने उनके विश्राम के लिए एक छोटा सा अंधेरा कमरा दिखा दिया। कमरे में प्रविष्ट होकर स्वामी जी जो ही आराम कुर्सी पर बैठे, त्यों ही वो चरमराती हुई बीच में से टूट गई।
7: हे भगवान!
5: और स्वामी जी अपना संतुलन खोकर उसके भीतर गिर पड़े। बहुत कोशिश करने पर भी उनका शरीर उसमें से निकल नहीं पाया, बल्कि उन्होंने पाया कि अधिक हिलने डुलने पर कपड़े फट जाने तथा शरीर छिल जाने की आशंका है। अतः वे उसी असुविधाजनक अवस्था में ही निश्चेष्ट पड़े रहे। आखिरकार व्याख्यान का समय हो जाने पर जब सचिव महोदय ने आकर मंच पर चलने के लिए उन्हें पुकारा, स्वामी जी चलिए, श्रोतागण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा,
8: महाशय, यदि आप मेरी वर्तमान शोचनीय अवस्था से उद्धार न करें तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को इसी प्रकार इंतजार करते रहना होगा।
5: यह सुनकर सचिव शीघ्रता पूर्वक भीतर आए और स्वामी जी को खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद हंसी ठहाकों से कमरा गूंज उठा। स्वामी जी इस घटना का इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते थे कि हंसते हंसते उनके गुरु भाइयों के पेट में बल पड़ जाते थे।
4: एक अन्य घटना से स्वामी जी की महानता तथा मानव जाति के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा व सहानुभूति अभिव्यक्त हो उठी थी। अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में कई बार उन्हें भ्रमवश नीग्रो समझ लिया जाता था। एक बार उसी अंचल में ट्रेन से उतरने पर उनका बड़ा भव्य स्वागत होते देखकर एक नीग्रो कुली उनके पास आकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं और आपके द्वारा नीग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है। मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। स्वामी जी ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक उस रेलवे कुली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वे अपने प्रति नीग्रो लोगों के व्यवहार के और भी उदाहरण दिया करते थे और अपने को नीग्रो समझ लिए जाने पर जरा सा भी संकुचित या नाराज नहीं होते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि दक्षिण के किसी होटल वाले ने उन्हें नीग्रो समझकर होटल में घुसने ही नहीं दिया और अभद्रता पूर्वक प्रताड़ित कर दिया। तथापि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वे एक नीग्रो नहीं वरन भारतवासी हिंदू हैं। इसके बाद अन्यत्र आश्रय लेकर स्वामी जी ने उस नगर में बड़ा सुंदर भाषण दिया तथा अगले दिन का समाचार पत्र पढ़कर होटल वाले को अपनी भूल समझ में आई और उसने आकर क्षमा याचना की। यहाँ तक कि अमेरिका के उत्तरी भाग में भी उन्हें हजामत की दुकान से अपमानित होकर निकल आना पड़ा था। काफी काल बाद ये घटनाएं सुनने के बाद जब उनके एक पश्चिम देशीय शिष्य ने पूछा कि इन स्थानों पर उन्होंने क्यों नहीं अपना सही परिचय बता दिया, तो स्वामी जी रोष पूर्वक बोले, क्या कहा, दूसरों की कीमत पर बड़ा होना, मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया।
5: रंग भेद पर आधारित श्रेष्ठता का दावा उन्होंने अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि ऐसा करने पर वे उसकी हंसी उड़ाते थे। उनका विश्वास था कि उनकी अपनी जाति के रक्त में विभिन्न धाराओं का सम्मिश्रण हुआ है। वे कहते थे,
3: यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पीत वर्ण मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी गर्व है, और मैं सर्वाधिक गर्वित हूं अपने कृष्ण वर्ण नीग्रो पूर्वजों के प्रति।
5: भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
4: उन्हें अपने शारीरिक गठन और विशेषतः अपने मंगोल जबड़े पर गर्व था, जिसे वे लक्ष्य सिद्धि के पथ में बुलडॉग जैसी दृढ़ता का परिचायक मानते थे। उनका विश्वास था कि मंगोल जाति की ये विशेषता आर्य जाति की सभी शाखा प्रशाखाओं में पर्याप्त हो चुकी है। इसी प्रसंग में एक दिन वे कह उठे थे, देखते नहीं ततार ही प्रत्येक जाति की प्राण शक्ति रूपी मदिरा है। वो सभी जातियों के रुधिर में बल और उद्यम संक्रमित करता है।
5: अपनी वाक पटुता के फलस्वरूप वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके पास व्याख्यान के लिए असंख्य आमंत्रण आते थे। उन सभी को स्वीकार करना उनके समय तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव न था, तथापि जिन्हें वे स्वीकार कर लेते थे उनके फलस्वरूप उन्हें सप्ताह में 12-14 तक व्याख्यान देने पड़ते थे। इससे उनका शरीर मन काफी थक जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें लगता कि बुद्धि का भंडार मानो शून्य हो गया है और वे व्याख्यान के विषय तक ठीक नहीं कर पाते। वे सोचते, अब क्या करूंगा, कल क्या बोलूंगा। ऐसी चरम अवस्था में अप्रत्याशित रूप से दैवी सहायता आ पहुंचती। इसके फलस्वरूप रात में सो जाने पर मध्य रात्रि के समय उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई देती, जिसमें उन्हें अगले दिन के व्याख्यान का विषय वस्तु बता दिया जाता। कभी ये आवाज काफी दूर से आती प्रतीत होती, फिर क्रमशः निकट आती जाती, अथवा देखते कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, या फिर कभी दो आवाजें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क करती, जिससे उन्हें अगले दिन के लिए सामग्री प्राप्त हो जाती। इनमें से अधिकांश विषय उन्हें पहले से अज्ञात तथा नवीन प्रतीत होते। कभी कभी तो उस मकान में रहने वाले अन्य लोग भी ये वार्तालाप सुनकर अगले दिन पूछते, स्वामी जी कल रात आप किसके साथ इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस पर स्वामी जी मृदु हास्य के साथ दो चार ऐसी बातें कहकर टाल जाते कि प्रश्नकर्ता के मन में ये व्यापार और भी रहस्यमय हो उठता। ज्यादा पूछताछ करने पर वे व्याख्या करते हुए कहते,
3: अरे वो कुछ भी नहीं, स्वयं क्रिय मन की स्वकेंद्रिक क्रिया मात्र है। वही अपने को दो भागों में विभाजित करके उपदेश देती है, बातें करती है और विचार करती है। यह आत्मा की ही असीम शक्ति की परिचायक है। आत्मा की असीम संभावनाएं इसी रीति से निद्रा काल में अभिव्यक्त होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई अलौकिक रहस्य नहीं है। इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं।
1: परंतु वार्तालाप के दौरान वे प्रायः इन सबको कोई महत्व नहीं देते या इसकी अलौकिकता को स्वीकार नहीं करते और युक्ति की सहायता से समझा देते कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया से ही ऐसा हो जाता है।
5: इन्हीं दिनों उनमें अलौकिक योग शक्तियों का भी स्फुरण हुआ था। मदाम कालवे की घटना में हमें उसका परिचय मिल चुका है, परंतु सामान्यतः वे उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। जिन विरल अवसरों पर वे उसका प्रयोग करते उस समय कोई ना कोई विशेष कारण विद्यमान होता था। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि इच्छा हुई तो स्पर्श मात्र से ही वे दूसरों की जीवन गति में परिवर्तन ला सकते थे। कमरे में बैठे ही दूर का समाचार जान सकते थे और दूसरों के अंतर मन की बातें देख लेते थे। कई बार देखने में आया कि पूछने के पहले ही वे प्रश्नकर्ता की शंका जानकर उसका निवारण कर देते। दूसरों की ओर देखकर ही वे उसके विगत जीवन के रहस्यों को खोल सकते थे। शिकागो के एक धनाढ्य व्यक्ति योग की शक्तियों के विषय में संदेहवान थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से कहा,
9: महाशय आप जो कहते हैं वो यदि सत्य हो तो फिर मेरे मन के गठन तथा मेरे अतीत जीवन के बारे में कुछ बताइए।
5: स्वामी जी ने क्षण भर के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी तीक्ष्ण दृष्टि इस प्रकार उनकी आंखों पर स्थिर कर दी कि वो दृष्टि अदम्य शक्ति के साथ उस व्यक्ति के देह मन को भेदती हुई उनकी जीवात्मा तक पहुंचने लगी। वे सज्जन घबरा कर कह उठे,
9: स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है मानो आप मेरी पूरी आत्मा को मत रहे हैं और मेरे जीवन के सारे गोपनीय रहस्य तैरते हुए ऊपर आ रहे हैं।
5: ऐसी शक्तियों के अधिकारी होकर भी वे उनका दुरुपयोग नहीं करते थे और ना ही उन्हें आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक मानते थे।
1: इसके फलस्वरूप स्वामी जी के पास आने वाला व्यक्ति आत्म उन्नति तथा धर्मानुभूति के पथ की ही जानकारी पाता और जीवन में एक नवीन प्रेरणा की उपलब्धि करता। उन दिनों वे मानो बाकी सब कुछ भूलकर अमेरिका की आध्यात्म चेतना को जगाने के कार्य में ही विशेष रूप से लगे हुए थे। अमेरिका की जनता भी उन्हें इसी दृष्टि से देखती थी। उनके लिए वे साधु थे, महापुरुष थे और अमेरिका को भारत का श्रेष्ठतम एवं मंगलमय अवदान थे। इसीलिए भारत के इन वरद पुत्र को अमेरिका के समाज ने अतीव आत्मीय के समान अपना लिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम भारत भारती।

आज इसमें प्रस्तुति होगी कबीर गायन की। कलाकार हैं रविदास, गंगापारी और उनके साथी। तो प्रस्तुत है कबीर गायन।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आया है सब जाएगा न राजा रंग फकीर। कोई सिंघास

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: इसके बाद अब हमारी गाड़ी यहीं से रवाना होगी, इसलिए
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

कार्यक्रम भारत भारती में आज प्रस्तुति हुई कबीर गायन की। कलाकार थे रविदास गंगापारी और उनके साथी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता, पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक, कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे, 1000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर न होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान, अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे। मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं, और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा, इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए यह स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद ना हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था, जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में ये घटना भी स्मरणीय रहेगी, इस तिलिस्म को खोल ही डालूं। ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला, पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2 ही 4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़े सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता।
यकायक दृश्य बदला। एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे, कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया, झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला, झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा। कितने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है, न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा।
हाँ, गाइड बुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रही हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ही सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 100,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। कालगति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंधभक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसी। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं। मैं उस विद्या को रोग समझती हूं जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसा पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो। अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हों तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है, संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है,
लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है। जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं, चारों ओर निंदा हो रही है। जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए। वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था। उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था। पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवने केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी। उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। तिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था। मालूम नहीं कि डाक से आता था, लिफाफों पर कोई मुहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था, वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे।
मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। ज्यों ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुखचंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करती हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया, और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी, परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ
आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे ये संदेह ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी। महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया, उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमरकवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य कैसे थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अब और न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है।

0: कबीरा कोता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं। दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
1: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
0: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहना ही नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
1: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
0: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
1: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
0: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
0: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
1: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
0: श्रोताओ, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
1: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
0: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
1: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
1: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
0: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
0: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
1: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
0: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था, और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिवजी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
1: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
0: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे, तो जीवन की संध्या बेरा में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
1: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
0: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
1: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
1: बिल्कुल,
0: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
1: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
1: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
1: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
1: जी हाँ। खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था। लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
1: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने न केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
1: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
1: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
1: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
1: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग पीएचडी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
1: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
1: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
1: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
1: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोच तो हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाड़ी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

शबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। शबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया। अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत, ए राम।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: न जी भर के देखा न

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: शुभ संध्या 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है जो कि रात्रि के 10 बजे तक निरंतर जारी है। आगे बढ़ने से पहले जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को। शाम 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा श्री राम की वैराग्य की दशा। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम आज समर्पित है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर। रात्रि के 8 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9 कार्यक्रम सोरसागर, कलाकार होंगी रीता तिवारी जो के प्रस्तुत करेंगी बुंदेली गायन। और रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 106 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं विश्वेदेवा और छंद है जगति और त्रिष्टुभ।
3: इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि मूतये मारुतम शर्धो अदितिम हवामहे रथम न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो आहसो निष्पिपर्तन। हम सभी अपने संरक्षणार्थ इंद्र मित्र वरुण अग्नि मरुदगण और अदिति का आवाहन करते हैं। हे श्रेष्ठ धनदाता वसुओं, आप जिस प्रकार रथ को दुर्गम मार्ग से निकालते हैं वैसे ही संपूर्ण विपदाओं से हमें पार करें। त आदित्या आगता सर्वतातये भूतदेवा वृत्र तूर्येषु शंभुवः रथम न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान् नो आहसो निष्पिपर्तन। हे आदित्य गणों, आप सभी हमारे अभीष्ट यज्ञ में आगमन करें। असुर संहारक युद्धों में हमारे लिए सुखप्रद हों। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, सभी विपदाओं से हमें आप उसी प्रकार पार करें जैसे दुर्गम मार्ग से रथ को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। अवंतु नह पितरह सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे रिता वृधा रथम न दुर्गा दसवह सुदानवो विश्वस्मान्नो आहसो निष्पिपर्तन। श्रेष्ठ प्रशंसनीय सभी पितर और सत्य संवर्धक देव माताएं, हमारी संरक्षक हों। हे श्रेष्ठ दान दाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने की तरह ही सभी संकटों से हमें बाहर निकालें। नराशंसम वाजिनम वाजयन्निहि क्षयद्वीरम पूषणम सुम्नै रीमहे रथम न दुर्गादसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो आहसो निष्पिपर्तन। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलवान वीर की शक्ति को संवर्धित करने वाले वीरों के स्वामी पूषा देव की हम श्रेष्ठ मनोभावनाओं द्वारा स्तुति करते हैं। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें सुरक्षित करें। बृहस्पते सदमिन्नः सुगम कृधि शम यो यर्ते मनुर्हितम तदीमहे रथम न दुर्गाद दसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो आहसो निष्पिपर्तन। हे बृहस्पते, हमारे मार्ग सदैव सर्व सुलभ करें। आपके पास जो मनुष्यों के कल्याणकारी श्रेष्ठ सुख प्रदायक और दुख निवारक साधन है, वही हमारी कामना है। हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो, आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने के समान ही सभी संकटों से हमें संरक्षित करें। इंद्रम कुत्सो वृत्रहणम शचीपतिम काटे निबाडह ऋषिरह्वदूतये रथम न दुर्गाद वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो आहसो निश्चित।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। और क्या आपको पता है, बहुत तेरी बातें छोटी छोटी ही होती हैं। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम दिन भर चिंता करते हैं और तनाव में रहते हैं, वे अधिक समय तक मायने भी नहीं रखती। इसीलिए अपूर्णता को स्वीकार कर ले। ये परफेक्शनिस्ट होने से अच्छा है।

हम जिन बातों का अभ्यास छोड़ देते हैं वो स्वतः हमसे छूट जाती है, चाहे वो बुरी आदतें हो या कोई अच्छी बात।

इस सोच को छोड़ दें कि सौम्य और शांत लोग सुपर अचीवर नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं, आप कूल रहकर भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव को समझें, क्योंकि एक नकारात्मक विचार आसानी से और भी कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है।

दूसरे लोगों और उनकी समस्याओं के लिए समझ विकसित करने से आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद करने में मदद मिलती है। यह आपको अधिक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण देता है। अपने आप को यह याद दिलाएं कि जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा हासिल करके जाएंगे जो मूल्यवान है।

अपनी चिंता और टेंशन को कम करने के लिए दूसरों को सही होने दे, उन्हें ये विश्वास करने दे कि वे ठीक कर रहे हैं। किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं है कि वो गलत हैं। ज्यादा धैर्यवान बने, धीरज का अभ्यास करें, दूसरों में मासूमियत खोजने की कोशिश करें और देखें कि वे जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

वर्तमान में जीना सीखें। अपने मस्तिष्क को इस पर ना भटकने दें कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। बस इसे बार बार वर्तमान में लौटा लाएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास वास्तव में है।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

गणित की एक कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को ये कहते हुए एक कठिन प्रश्न दिया कि जो भी इसे हल कर लेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। एक बच्चे के अलावा कोई भी उसे हल नहीं कर सका। अध्यापक ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया, लेकिन वो छात्र पश्चाताप के कारण रात भर सो न सका। अगले दिन उसने वो पुरस्कार लौटा दिया और ये कहते हुए अध्यापक से माफी मांगी कि मैंने पुस्तक से नकल करके ये प्रश्न हल किया था। इन्हीं जीवन मूल्यों और संस्कारों के बल पर वो एक महान देशभक्त और समाज सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे दुनिया गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से पहचानती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा के विस्तार, सामाजिक सुधार के साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम को 3 दशक तक अपनी ऊर्जा से गति प्रदान की। वित्तीय मामलों की गहरी समझ और उस पर प्रभावशाली बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लैडस्टन कहा जाता है। वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख उदारवादी नेता थे, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को रत्नागिरी के पास स्थित कोटलुक नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराव गोखले और माताजी का नाम वलुबाई गोखले था। एक साधारण से परिवार में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। बहुत कम आयु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। जीवन के इस संघर्ष ने उन्हें कर्मठ और संवेदनशील बना दिया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर से कचोटती रहती थी और भारतीय समाज की दशा देखकर वो अत्यंत विचलित हो जाया करते थे। पिता के असामयिक निधन ने उनके जीवन के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी कर दीं, लेकिन अपने आत्मबल से उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी शिक्षा बाधित नहीं होने दी, क्योंकि उनके जीवन के लक्ष्य बड़े थे। भारत भूमि की सेवा का संकल्प उनके मन में बचपन से ही जागने लगा था।

गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1881 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति गहरे लगाव के कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिला करती थी, इसीलिए उनकी शिक्षा में कभी कोई व्यवधान नहीं आया और गोपाल कृष्ण गोखले स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक हुए। शिक्षा को वो किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वो कहा करते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो व्यक्ति को अच्छा नागरिक और राष्ट्र रूपी परिवार का एक उपयोगी सदस्य बनाती है। यही कारण है कि उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन का कार्य किया। यहीं वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। हालांकि आने वाले समय में दोनों की विचारधाराएं अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुईं और तिलक जी ने जहां गरम दल में रहते हुए राष्ट्र सेवा की, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल में शामिल रहे। बावजूद इसके दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव सदा बना रहा। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे से गोपाल कृष्ण गोखले अत्यंत प्रभावित थे। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। ये सोसाइटी लोगों में जागृति और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा पर विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्राध्यापक के रूप में इससे जुड़े। ब्रिटिश सरकार और आम जन के बीच मध्यस्थता हेतु एक सेतु की तरह पूना सार्वजनिक सभा भी गठित हुई थी, जो एक पत्रिका का प्रकाशन किया करती थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। सन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में वो शामिल हुए और इस तरह उनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ चली। उन दिनों अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विकास हेतु किए जा रहे व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए वेल्बी आयोग का गठन किया था। चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की गहरी समझ थी और वो राजस्व तथा बजट आदि के अच्छे जानकार थे, इसलिए वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वो इंग्लैंड भी गए, इसीलिए उन्हें भारत का ग्लैडस्टन कहा गया। इस तरह भारत हर पल उनकी चिंता और चिंतन का विषय बना रहा और राष्ट्र सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा।

गोपाल कृष्ण गोखले सन 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और सन 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए चुने गए। वो दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी से मिले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्या में विशेष रुचि ली और गांधी जी को मार्गदर्शन भी दिया। गांधी जी पत्राचार करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। गोखले जी की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया था। गांधी जी से वो अत्यंत प्रभावित थे। उनके कहने पर ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले जी ने गांधी जी से कहा कि तुम इतने लंबे समय से देश से बाहर हो, इस देश को समझने के लिए तुम्हें पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए और जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती तुम भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी मत बोलना। इस तरह एक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को गढ़ने का काम किया। साबरमती आश्रम की स्थापना में गोपाल कृष्ण गोखले ने आर्थिक मदद भी की थी। युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ने के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके सदस्य आजीवन देश सेवा का वचन लेते थे। गोपाल कृष्ण गोखले अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि वो नरम दल में शामिल रहते हुए राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ने जाति प्रथा और छुआछूत का भी सदा विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्वशासन और सामाजिक सुधारों के लिए लगातार प्रयास किए। बंगाल विभाजन की घोषणा ने स्वदेशी आंदोलन को चरम पर पहुंचा दिया था। ऐसे समय में ब्रिटिश राज को अपने प्रशासन में सुधार हेतु विवश होना पड़ा था। इसी उद्देश्य से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीयों के पक्ष में कई प्रावधान रखे गए। इस मार्ले मिंटो सुधार में गोपाल कृष्ण गोखले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह उन्होंने आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 19 फरवरी सन 1915 को अंतिम सांस ली। गोखले जी के कार्य और उनकी विचारधारा ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी ने कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले गंगा की तरह हैं। जैसे पवित्र नदियों में स्नान करके कोई भी पवित्र हो जाता है, ठीक ऐसे ही थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित था।

जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रवि को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रवि की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगू राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रवि की हत्या को एक प्रोपोगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रवि की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा।
0: किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों से का सातवां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं और इस बार भी हमारे साथ हैं पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
0: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में छुरा भोंका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर दमोह तक पहुँच गया और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े। और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती और दमोह में नरेक पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहाँ अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
2: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं।
0: जी, क्या बात।
2: तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है। वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है,

0: संगठित कर रहा था। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था, इसीलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
1: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया, और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी आगे बढ़े हम, और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा, और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खां आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने।
0: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी तो उन्होंने चार पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
1: जी,
0: और उधर आसफ खां को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहां हो गई।
1: जी,
0: तो आसफ खां को पता नहीं चल पा रहा था।
1: जी,
0: उसने कुछ समय तो इंतजार किया।
1: हाँ,
0: और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
1: जी,
0: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 हजार की सेना रानी के पास थी।
1: जी हाँ।
0: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
1: जी हाँ।
0: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी।
1: जी।
0: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
1: वाह।
0: कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को बुलाया और उसे संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहाँ पर करो और मरो की स्थिति है, कोई जाना चाहे तो वापस जा सकता है।
1: जी।
0: लेकिन रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने बड़ा काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एकमत होकर युद्ध करने का संकल्प लिया और एकजुट होकर यह स्वीकार किया कि इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा सामूहिक रूप से सभी उसके भागीदार होंगे।
1: जबकि सब जानते थे कि अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है।
0: बिल्कुल। अब नरई में रानी की सेना तैयार थी। उधर से सूचना मिल चुकी थी कि आसफ खान की सेना के फौजदार नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद अपनी सेना के साथ नरई के जंगलों में पहुंच रहे थे।
1: जी।
0: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा।
1: जी।
0: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
1: अच्छा।
0: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी, चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
1: तो मतलब कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
0: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं, जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
1: हाँ।
0: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
1: तो पूजा जी एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे मार गिराया था।
0: जी हाँ, ये देशज तकनीक कह सकते हैं इसको।
1: जी।
0: कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस तकनीक से लड़ना जानते थे।
1: जी।
0: और कई सारे युद्ध उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि लड़े और जीते भी।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आख्यान कुछ लोकगीत गाए गए रानी दुर्गावती जी की स्तुति में और ये वहां पर बहुत काम आए युद्ध में, वो क्या थी तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
0: हम अभी तक जब भी सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार में कई सारे लेखक हैं।
1: जी।
0: हमने अबुल फजल

0: का नाम सुना, फरिश्ता का, बदायूनी का, बहुत सारे नाम हैं। पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष लिखित इतिहास दरबारी लेखकों द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी दरबारी लेखक लिखते हैं तो वो राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और सामने वाले को बहुत ही निष्कृष्ट भी दिखाया जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती जिसमें कि दरबार में लेखकों को रखकर उनसे इतिहास लिखवाया जाए।
1: जी।
0: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता। पर हाँ, अगर हम
1: लोग
0: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं। जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
1: यश को जो पहले जस कहते थे,
0: तो खूब सारे आख्यान, जस, गीत हम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
1: वाह,
0: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी।
1: जी।
0: तो गड़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी।
1: जी।
0: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है।
1: जी।
0: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है, और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो।
1: जी।
0: तो एक सेला लोकगीत है।
1: जी।
0: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है।
1: जी।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए।
1: वाह।
0: रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो, राजा दलपत के रानी हो, रण चंडी कहाए, डगर डगर माँ डोलो हो, गण मंडला बचाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए।
1: वाह, क्या बात।
0: तो इसका अर्थ यह है कि जैसे माँ दुर्गा अपनी संतानों की रक्षा करती है, महारानी दुर्गावती वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करती है। वो रण में तलवार लेकर जूझ पड़ती है, वह रानी दुर्गा कहलाती है।
1: जी।
0: वह राजा दलपत की रानी है, रणचंडी कहलाती है। डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है।
1: हाँ।
0: माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है माँ दुर्गा, अपने हाथों में तलवार लिए रणचंडी हो गई है।
1: वाह पूजा जी, क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप हमने कई बार ये जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
0: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो समाज का आईना नहीं है,
1: वो
0: अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में।
1: जी।
0: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो।
1: हाँ।
0: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है।
1: जी।
0: और जनता उसे कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए।
1: जी।
0: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
1: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियां कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जरूर, अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढें, तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी। अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया, अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई, तो इस पर चार पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन माँ सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है
1: जी।
0: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है
1: जी।
0: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है
1: जी।
0: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं और उनके केस लंबे हैं
1: जी।
0: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और दमक दमक रानी गर्जे, फौजी दे ललकार, इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है
1: जी।
0: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
1: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है।
0: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो, ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
1: याद
0: है।
1: किया जाता है बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है, लोकगीतों में सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गूंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
0: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है
1: जी।
0: इस गीत की चार पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर फौजी सबे तैयार।
1: वाह क्या बात।
0: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया
1: जी।
0: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं
1: जी।
0: उनकी आंखों से काय अखियन से बरसे अगिया
1: जी,
0: आंखों से आग बरस रही है, और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
1: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है, जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है, जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं, लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
0: जरूर।
1: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, विषय था रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजितियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं, बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।

0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है श्री राम की वैराग्य दशा। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में योग वासिष्ठ की दिव्य कथा के वैराग्य प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री राम के वैराग्य की गहन अनुभूति प्रवाहित है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से युक्त होते हुए भी जब मन संसार से विरक्त हो जाए, जब हर सुख असार लगने लगे, जब ये जगत क्षणभंगुर और माया मात्र प्रतीत हो, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वही है श्री राम की वैराग्य दशा। आज के इस अंक में हम उसी भावभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। वो विरक्ति जो पलायन नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रारंभ है, वो प्रश्न जो मन को विचलित नहीं बल्कि जागृत करते हैं। तो आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां श्री राम का वैराग्य हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। योग संवाद में आज की चर्चा श्री राम की वैराग्य दशा पर, और इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: श्री राम की वैराग्य दशा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अंक में हमने बात भी की कि तीर्थ करके जब लौटते हैं भगवान श्री राम
2: जी,
1: तो उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। वो बहुत कमजोर और सोच में रहने लग गए हैं और इससे पिता उनके बहुत चिंतित हैं
2: जी।
1: तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तीर्थ करने के बाद श्री राम की स्थिति कैसी है, ये आप हमारे सुनने वालों को बताएं।

0: एरर हुए। तो ऐसे जब कोई तत्वदर्शी ऐसा होता है तो वो जगत को देखता है, कहता है देखो आप क्या कर रहा है, आदमी क्या करने आया था, क्या कर रहा है, अवलो नसानी अबना नसानी हो जी। तो राम जी कहते हैं कि संपत्ति से विपत्ति,
1: अच्छा
0: ये उनके वैराग्य की स्थिति है कि जितनी विपत्तियां हैं वो सब संपत्ति से आ रही हैं।
1: अच्छा।
0: और जबकि संसार ठीक उसके उल्टा सोचता है कि सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति प्राप्त करना चाहता है।
1: ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है या जिस लिए जी रहा है उसके जीने का एक बड़ा मुख्य ध्येय है संपत्ति। और क्या कह रहे हैं श्री
0: राम? कह रहे हैं कि संपत्ति से विपत्ति, घर अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या क्या होने वाला है। कहते हैं कि जितनी भी विपत्तियां हैं उस विपत्तियों का एकमात्र कारण संपत्ति है। और आप कभी देखिए तो आप एक बच्चे को कभी जब आप देखें, छोटे बच्चे को
1: जी,
0: तो वो जिस आनंद में होता है उसके पास कोई संपत्ति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन संपत्ति नहीं है इसलिए कोई विपत्ति भी नहीं है, तो अकारण वो हंसता है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: है ना? लेकिन जब हम संपत्ति के महत्व को जैसे जानते हैं
1: वैसे वैसे दुखी होते जाते हैं
0: और विपत्तियां घेर लेती हैं।
1: जी,
0: संपत्ति
1: जी,
0: आती है तो फिर आप संपत्ति की रक्षा करने की बात करते हैं, इसको इसके द्वारा ही अपने जीवन में आप सुख समृद्धि ला सकते हैं ऐसी भावना आपके अंदर आती है।
1: बिल्कुल,
0: जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक ये भाव भी नहीं था। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है और वो कहते हैं यहाँ जगत में सब कुछ मिथ्या है, और ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं। ये उनकी स्थिति है,
1: है ना?
0: तो एकदम किसी विषय में उनका कोई आसक्ति नहीं है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो ये सब उनकी मतलब वैराग्य की स्थिति है, जो बार बार उन्हें सोचने पर विवश कर रही है कि वास्तव में है क्या ये संसार
1: जी।
0: और इसको लेकर के आपस में वो जूझ रहे हैं जी।
1: तो श्री राम की जो ये स्थिति है इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं?
0: इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं रघुनंदन श्री राम की जो ये स्थिति है, ये स्थिति न तो किसी मोह से उत्पन्न हुई है और न किसी आपत्ति से। मोह जब होता है तो आपको आसक्ति होती है, और आपत्ति जब आपके जीवन में दिखाई देता है तो आप उस चीज से बचना चाहते हैं, विरक्ति होती है। लेकिन तो आसक्ति और विरक्ति का मूल कारण क्या है? मोह और आपत्ति। जैसे आपको किसी विषय से आपत्ति दिखाई दे रही है या उसमें विपत्ति दिखाई दे रही है तो उससे आप वैराग्य लेते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इससे जीवन में कष्ट आता है। तो ये कहते हैं कि राम जी की जो स्थिति है, जो संसार के तमाम लोगों की स्थिति है, कि वो जो आपत्ति जो उन्हें होता है और जो आसक्ति होता है और इसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आता है, वो राम की स्थिति नहीं है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, इसलिए उन्हें मोह नहीं बोध प्राप्त हुआ है।
1: अब तो क्या ये आसक्ति विपत्ति और आपत्ति की आपने जो बात की, इसको देखने से वैराग्य होता है क्या?
0: बिल्कुल, वैराग्य आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, उसके बोध से होता है। ये अच्छा। आपने बहुत सूक्ष्म सवाल किया। कई बार क्या होता है, जैसे हम जान भी लें, सभी को ये पता हो जाए कि ये मार्ग, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं एक पंक्ति कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सबसे ऊपर रघुवीर हैं। ये भरद्वाज जी भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस संकटपूर्ण जीवन को कैसे जिया, वो कथा मुझे कहिए। तो कहते हैं उसी का भजन संत करते हैं। तो भजन का अर्थ हम लोग राम नाम जपना समझ लेते हैं। राम नाम जपना नहीं, राम का नाम जिस नाते जपा जा रहा है उस कर्म को जीवन में अंगीकार करना, ये है भजन।
1: बहुत सुंदर।
0: ये भजन नहीं है कि आप उनके नाम को लें,
1: बल्कि
0: आप देखिए कितनी सुंदर बात है। कभी कभी कथा आती है, कई लोग कहते भी हैं कि रावण कहता है कि तामसी तन से राम का नाम लिया नहीं जाता।
1: जी,
0: और कई बार था आती भी है, बड़ा रोचक तरीके से लोग कहते हैं कि जब मंदोदरी कहती है कि आपको तो वेश बदलना आता है, अगर सीता में इतनी ही आसक्ति आपके पास है तो क्यों नहीं राम का वेश धारण करके आप सीता के सामने जाते हैं और वो आपके साथ हो लेंगी। पत्नी कह रही है। तो वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया मुझे पराई स्त्री माँ दिखती है।
1: ये प्रसंग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाता है।
0: रोमांच हो रहा है।
1: पहले भी मैंने सुना है कि रावण ऐसा कहता है,
0: कहते कहते रोमांच हो गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो सोचिए उस आत्मी का अंतःकरण मतलब और
1: कैसा होगा,
0: कैसा होगा
1: कि वो उसका स्वरूप लेने भर से उसको पराई स्त्री
0: माँ नजर आती है। तो अगर
1: ये राम तत्व है,
0: तो ये राम तत्व है। तो इस दृष्टि के साथ जब भी कोई शरीर धारण करेगा तो वो क्या भगवत्ता उससे प्रकट नहीं होगी? कौन है जो उससे विरोध कर सकता है?
1: जी, जी,
0: है ना?
1: जी, जी,
0: तो ऐसी स्थिति है। तो जो आपने कहा कि वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि जो ये आसक्ति आपत्ति मतलब के दर्शन नहीं, इसके बोध से आपको वैराग्य होगा।
1: अच्छा, इसमें विश्वामित्र जी बीच में कहीं पर, मैं पलट रही थी इसके पन्ने, तो दिखता है कि वो सत्यता, मुदिता और प्रज्ञा के विषय में भी बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या है और वो क्या कह रहे हैं?
0: वो कह रहे हैं कि अगर हमारे उपदेश का वास्तविक बोध हो जाए तो रामचंद्र जी सत्यता की प्राप्ति करेंगे। अब देखिए, सत्यता में कहते अमृत पिए हुए पुरुष की भांति। अब इसमें इशारा क्या है? अब जैसे अमृत की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कोई अमृत है।
1: मुझे लगता है कि पहले आप ये बताएं कि उनका कथन क्या था पूरा।
0: जी, उनका कथन ये था कि जो रघुनंदन ये राम हैं, हम लोगों की भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जो उपदेश मैं कर रहा हूं, अगर ये उन्हें उन्होंने सुन लिया।
1: अच्छा,
0: है ना? तो हम लोगों की भांति मतलब जैसे विश्वामित्र जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं या ये अपने वशिष्ठ जी परम पद में प्रतिष्ठित हैं, तो ऐसी राम की स्थिति होगी, क्योंकि जो उनकी ये दशा हुई है वो संसारियों की तरह नहीं हुई है, है ना, कि वो आसक्ति और आपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, विपत्ति से उत्पन्न हो गई हो, ये तो बोध से उत्पन्न हुआ है। तो बोध से उत्पन्न होने के बाद अगर वो उपदेश सुन सकें तो वो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। और उसमें कहते हैं कि अमृत पिए हुए पुरुष की भांति, यानी जिसका मृत्यु भय समाप्त हो गया। अमृत पीने का मतलब अमृत जैसी कोई चीज नहीं है कि जो पी के जिसके चित्त से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, वो सत्यता को प्राप्त हुआ। मृत्यु का भय समाप्त कभी भी शरीर से तो नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो रहेगी, लेकिन इस शरीर से अगर सत्यान्वेषण हो गया और सत्य का बोध हो गया
1: जी,
0: तो वो सत्य जो है आपको मृत्यु भय से, जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो तीन तरह की संकल्पना लेकर के हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, इससे पूरी तरह से मुक्त कर देगा। तो वो सत्यता, क्योंकि सत्य शरीर नहीं है, सत्य शरीर ही है जिसने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे में क्या है वो, इसका अर्थ कि अगर आपके जीवन की रक्षा हो पा रही है तो इसलिए हो पा रही है कि आपने धर्म की रक्षा जाने अनजाने में की है। तो ठीक ऐसे ही शरीरी शरीर में है, इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इसका बढ़ना है, डेवलपमेंट है, या जो साइको मोटर एक्टिविटीज हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये हो किसकी वजह से रही है? शरीर की वजह से, उस निर्गुण निराकार की वजह से हो रही हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ये आत्मतत्व है। तो कहते हैं कि ये जो जान लेगा वो अमृत पिए हुए पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसको मृत्यु का भय नहीं है। और देखें, इसी को हम कहते हैं अभयता। भय जितने भी हैं, उस भय के पीछे आप देखेंगे तो मृत्यु ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु ही नहीं हुई, आपके विचारों की मृत्यु, जो मान सम्मान यश जो कुछ भी आपने अपने शरीर या संसार के व्यवहार या संसार की लर्निंग से आपने सीख रखा है, उन सब में कहीं कहीं मिटने का जो भय होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: जैसे मृत्यु शरीर के मिटने का भय है, तो ऐसे में कोई भी चीज जो आपने अर्जित की है सुख के लिए, उसके मिटने का भय, तो एक प्रकार की मृत्यु ही है वो, कह सकते हैं। तो वो कहते हैं क्षरण है, तो वो ऐसी स्थिति आती है उस सत्यता को जो त्रिकाल बाधित है। तो त्रिकाल बाधित कोई अगर है तो ब्रह्म रूपता है, शरीर त्रिकाल बाधित नहीं है। शरीर पर तीनों काल का असर होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों अवस्थाओं का असर होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का। लेकिन उस चैतन्य पर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना हुआ है और तीनों अवस्थाओं से अलग है, उस पर जिसको तुरिया अवस्था कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो ऐसे में उस पर कोई असर नहीं होता। तो राम को वो सत्यता का बोध होगा। उसके बाद कहते हैं मुदिता, सत्य के बिना व्यक्ति मुदित नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ना मुदित हो गया,
1: मुदित
0: आनंद परमानंद स्वरूपता, तो उसका आनंद अब जाने आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, तो वो मुदित हो गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चित्त के प्रसन्नता या उसकी पवित्रता के ये सूत्र हैं कि आप पुण्यात्मा के प्रति मुदित हो जाएं। ऐसे जो सत्य के प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको देख करके आपके अंदर मुदित भाव हो जाए, तो यानी परम आनंद रूपता हो। और प्रज्ञा की प्राप्ति, प्रज्ञा का मतलब होता है अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता। अब देखिए, हम लोगों का जो ज्ञान है वो क्या करता है, हमको अलग करता है। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब अलग करना, और अपरिच्छिन्नता का मतलब कि हम अलग ही नहीं है, सब मुझ में और सब में मैं हूं, ये अपरिच्छिन्नता है। तो इसको कहा गया हमारे ऋषियों ने कहा प्रज्ञा। तो जब ये तीनों की प्राप्ति होती है, तीनों एक क्रमिक हैं, कह सकते हैं क्रमिक गति से इनकी स्थिति आपको मिलेगी। बिना सत्यानुसंधान के, बिना सत्य बोध के आप जो है मुदिता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और बिना मुदिता के आपको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो है आपकी अपरिच्छिन्नता, जिसको फिर मैं गोस्वामी जी की पंक्ति में सहज करूं अपने श्रोताओं के लिए कि जो आदि योगी शिव हैं, जो कि योग ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं तो हम आदि योगी शिव की बात को करें, वो कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि संग करहि विरोध। वो फिर वही अपरिच्छिन्नता वाली बात आ गई कि निज प्रभु मैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुगुपानी। तो वो स्थिति होती है कि राम में पूरी सृष्टि दिखाई दे, वो स्थिति आती है तब जब प्रज्ञा आपके अंदर प्रकट होता है, और प्रज्ञा आपके सत्य और मुदिता की स्थिति आने के बाद ही होता है। तो राम जी को उन्होंने कहा कि ये प्राप्त हो जाएगा, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तो वो परम सुख को प्राप्त करेंगे, संताप शून्य हो जाएंगे, और जो शरीर इनका ये कृश दिखाई दे रहा है ये पूरी तरीके से हिष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आजकल आप देखेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां विकसित हो रही हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बीमारियां हैं उसमें 75% से 80% बीमारियां आपकी साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से आती हैं, है ना। तो मन से क्यों आती हैं? क्योंकि मन की स्थिति यही तीन की नहीं है, न मन सत्य जानता है, न मन मुदित है, न मन प्रज्ञावान है, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, चित्त में दोष उत्पन्न हो गया। अब उस दोष का प्रभाव ये हुआ कि प्रभाव तो शरीर पर दिखेगा, तो शरीर किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो गया। कैंसर जैसी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है स्ट्रेस, तनाव, कि कोशिकाओं पर बार बार आप प्रहार कर रहे हैं, तो फिर अंत में वो अपना स्वरूप भूल जाती हैं। वो आपके जीवन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आई थी, अब वो इम्यून को ही खाने लगी हुई हैं, आपको ही मिटाने पर लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्थिति जब उनको प्राप्त होगी तो वो फिर संताप शून्य होंगे। तो आज आदमी देखे तो संताप में है, भागवत कथा में हम कहते हैं ना कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीन ताप जो है जिससे चित्त संताप ग्रसित है, जब तक इससे आप अपने को मुक्त नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग ही, सत्संग मतलब वही सत्य, जो सत्य का अनुसंधान जिसमें आप त्रिकाल बाधित सत्ता को जान सकें, और जान करके आप फिर हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रह सकें, और साथ ही साथ आप अपनी अपरिच्छिन्नता यानी शिवत्व का बोध कर सकते हैं। यही है सत्यम शिवम सुंदरम।
1: जी तो इस कथा में हम कहाँ पहुंचे हैं? ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम फिर से वैसे हो जाएंगे
0: जी,
1: अगर मैं जो कह रहा हूँ उसको वो सुने।
0: आप जो राम के शरीर की ये दशा देख रहे हैं, जिसको देख करके तो आप
1: पिता,
0: दुखी हो
1: पिता की चिंता
0: हाँ, जी, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम को अब योग की जरूरत है, और ये वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ का उन्हें जो ज्ञान देंगे उसके बाद वो इस अवस्था को प्राप्त होंगे, सत्य मुदिता और मोक्ष प्रज्ञा उनको मिलेगा। तो इससे फिर वो फिर अब उनका जो शरीर है वो हिष्ट पुष्ट हो जाएगा और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे।
1: अच्छा, इसी में आगे कहीं लोकव्यापी निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध कैसे होता है, कैसे हो सकता है?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, चूंकि व्यवहार तो प्रकृति के साथ प्रकृति में ही होगा, है ना। तो कहते हैं उसमें जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण का गुण प्रकाश है। आजकल के मतलब समय में बहुत प्रचलित है एनलाइटेंड, कहते हैं कि एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड गुरु हैं। अब एनलाइटेंड गुरु का मतलब समझते हैं लोग कि कोई दिव्यता उनमें आ गई, दिव्यता नहीं, उनके पास प्रज्ञा है, वो अपरिच्छिन्नता का बोध है, वो अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके अंदर परिच्छिन्न भाव नहीं है, है ना, वो श्री राममय की स्थिति में जगत को देख रहे हैं
1: जी।
0: तो कहते हैं कि सत्व गुण से युक्त होने पर जो लोकव्यापी, लोक में जो व्याप्त है निर्गुण सगुण, ये दो संप्रदाय बने
1: जी,
0: निर्गुणिया और सगुणी, सगुण वाले संप्रदाय, कुछ लोग सगुण उपासक हो गए, कुछ निर्गुण उपासक हो गए, लेकिन कहते हैं ये दो नहीं है। तो कहते हैं कि ये सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये अभेद है, लेकिन ये जानते कौन है? बुद्ध पुरुष।
1: अच्छा
0: जी, और ये वेद कह रहा है ये स्थिति है। तो वो कहते हैं कि जब ये तत्व चिंतन होगा तब ये भेद मिटेगा। तो जो लोक व्यापी ये सगुण निर्गुण रूप ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न जैसे वो होंगे, वैसे जो ये भेद की स्थिति है, वो जो आज जगत को देख रहे हैं, जगत का व्यवहार देख रहे हैं, जिन कारणों से उनके चित्त में संताप हुआ है या जिस पर विचार करने लगे हैं, या जो कहते हैं ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो वो जीवन मुक्त हो सकेंगे। और जीवन मुक्त होने के बाद अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्रिया से अपने आप को अलग कर लिया, तब वो बोध के साथ जो है समस्त क्रियाओं को ऐसे करेंगे जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल कीचड़ से सर्वथा मुक्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये स्थिति उनकी
1: होगी। ये बता रहे हैं विश्वामित्र जी। दुख परंपरा के उत्पादन की बात भी इसमें की गई है। मैं चाहती हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर आप आइएगा। तो वो भी एक जगह दिखता है कि दुख परंपरा के उत्पादन की बात दिखाई देती है। तो क्या कारण है जीवन में दुख का?
0: अब जब राम जी को ऐसी स्थिति में देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर विजय पा ली है। अब देखिए, शूरवीर होने का मतलब किसी व्यक्ति को जीतना नहीं है, किसी स्थान को जीतना नहीं है। विषय जो बार बार उन विषयों को अपना समझ लेना या अपना बनाने की चेष्टा करना, ये है शत्रुता। आज देखें तो किसी प्रकार का जो विश्व में ये जो शत्रु भाव है, वो शत्रु भाव एक्चुअल में विषय रूपी विषयों को पाने की आकांक्षा से उत्पन्न हो रहा है
1: जी।
0: तो वो कहते हैं कि विषय रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। राम को उनके स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में क्यों हो, क्योंकि अब तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि कोई विषय तुम्हारे आकर्षण और विकर्षण का कारण ही नहीं है। सामान्यतया देखें आप तो जो राग और वैराग्य ये दो शब्द आते हैं, ये आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में आते हैं, या एक दूसरे के सापेक्ष इन्हें समझा जाता है कि संसार में जिनको राग है उन्हें अपने आत्मस्वरूप से वैराग्य हो गया, वो रूप के ही राग में फंसे हुए हैं, और जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो संसार से राग छोड़ के वैरागी हो गए। यही दो रूप दिखाई देते हैं। ये कहते हैं ये दोनों स्थिति नहीं है, लोकव्यापी ये सगुण निर्गुण का जो ब्रह्म तत्व है उसका ये वास्तविक ज्ञान नहीं है।
1: अच्छा।
0: और यही जो है दुख की परंपरा का उत्पादक है, जो बड़ी कठिनाई से नष्ट होता है। अच्छा। इतना आसानी से नष्ट नहीं होता। इसीलिए आप देखते होंगे कि आदमी जब कहीं किसी कर्म से उबता है तो किसी दूसरे कर्म का चुनाव करता है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो अंततः देखें तो कर्म से कर्म को काटने का प्रयास करता है, जबकि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म अनासक्त भाव से करना है, जिसके लिए गीता भी योग शास्त्र का ग्रंथ है और वो भी कहती है। तो राम जी से ये कहा जा रहा है कि आप जो ये देख रहे हैं जगत को, ये जगत में अनासक्त व्यवहार करके आप जीवन मुक्त हो करके यहाँ सारे अपने दायित्वों का निर्वाह करें के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है, और प्रकृति ने जिन जिन चीजों के लिए आपको यहाँ आने का अवसर मिला है, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना है। अब धर्म की संस्थापना के लिए कई बार लोग कहते हैं कि धर्म भी एक बंधन है। कई लोग धर्म से बंध जाते हैं और कहते हैं यही धर्म है जो मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप देखें कोई भी चीज अगर अपने अस्तित्व में है तो अपने धर्म के साथ है, इसलिए है, है ना। और अगर उसके अस्तित्व को खतरा है तो आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, जो राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रकृति का पोषण है, शोषण नहीं है। और आज हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान विकसित हुआ तो ये जो अभी हमने सत्य और मुदिता और प्रज्ञा वाली बात नहीं रही, तो परिणाम ये हुआ कि हमने समझ लिया कि अब तो प्रकृति की सारी शक्तियों के अधिपति हम हो गए, और हम उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में वो पीढ़ियां भुगतेंगी। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों या प्रकृति के धर्म का पालन किया तो प्रकृति आपके जीने योग्य रही, लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हो गए कि आपने प्रकृति को ऐसा बना दिया कि कल आने वाली पीढ़ियां जन्म लेने के साथ ही वो सांस लेने में संकट में हो। कितने मतलब बड़े मतलब राक्षस कह सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति तो है।
1: इन दिनों संवहनीय विकास की जो बात चल रही है
0: जी बिल्कुल,
1: इसीलिए
0: तो कहते हैं विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में जो आए उनको भी ये धरातल वैसा मिले जैसा आपको मिला था।
1: अच्छा, इसमें भोग के साधनों पर भी चर्चा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है?
0: अच्छा, भोग के साधनों,
1: लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ इस कथा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा भी हमारे जो श्रोता है उन तक पहुंचती रहे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा कि तुम्हारे जो नेत्रों में जो चंचलता दिखाई अभी दे रही है उसको त्याग कर बताओ कि मोहित क्यों हो रहे हो, क्योंकि राम जी को यहाँ ये दो लोग मतलब गुरु के रूप में है, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र उन्हें कर्म शास्त्र का बोध कराने के लिए आए हैं, कर्म शास्त्र के लिए उत्प्रेरित करना है, क्योंकि कर्म शास्त्र छोड़ चुके हैं, लेकिन कर्म शास्त्र बिना तत्व ज्ञान के,
1: जो भूमिका गीता में श्री कृष्ण की है वो यहाँ विश्वामित्र की है, और जो स्थिति वहाँ अर्जुन की वो यहाँ श्री राम की हो गई।
0: कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से सापेक्षता को समझाते हुए कह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कृष्ण ही वो रूप प्रकट कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया है वहाँ, है ना। तो खैर, तो ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि त्याग कर तुम मोहित क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मोह और भ्रम का क्या कारण है, ये राम जी से पूछते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि इस सांसारिक विषयक आस्था में मेरा मन बिल्कुल नहीं जाता।
1: नहीं।
0: संसार में जो आस्थावान लोग दिखाई देते हैं, जब उनको मैंने देखा और उनकी दशा देखी, तो मेरा तो उस दशा को देखने के बाद, कहते ना कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो ठोकर से गिरते नहीं है, ठोकर देख के समझ जाते हैं, है ना, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ठोकर खा के भी नहीं संभलते। तो राम जी उस तरह के, मैं देखा और संसार में जितने भी भोग हैं ये सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं। राम जी को इसका बोध है, हम लोग इसको कहते हैं
1: बिल्कुल,
0: और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं उन्हीं भोगों के प्रति, नए नए भोगों के प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं कि अब गाड़ी थोड़ी बड़ी कर ली जाए, घर थोड़ा बड़ा बना लिया जाए। अब इसके पहले जब ये घर नहीं था तो ऐसे ही घर की कल्पना थी और लगता था कि ये घर मिल जाता तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होती, इसके लिए मन्नतें कर रहे थे। अब जब ये घर आ गया तो फिर ये भी छोटा पड़ने लगा, फिर और बड़े घर की कल्पना होगी। तो कहते हैं कि हम लोग भोगों की क्षणभंगुरता के बारे में बोलते हैं, क्षणभंगुरता हमको दिखती नहीं है। अगर दिखे तो बुद्ध की स्थिति, जैसे बुद्ध ने राज्य ही तो छोड़ा था,
1: बिल्कुल,
0: है ना, वो जबकि जो चीज हम पाना चाहते हैं या जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है वो सारी चीज छोड़ के वो चले आए।
1: बिल्कुल,
0: आप देखें अयोध्या को, तो अयोध्या में भी राम जी राज्य ही छोड़ के जा रहे हैं, जंगल में तनिक भी उनको राज्य में आकर्षण नहीं है। तो क्योंकि उनको इस तत्व का बोध हो चुका था कि ये सारे भोग अस्थिर हैं, इनका स्वभाव जो है वास्तविक इनका रूप है, इनकी क्षणभंगुरता है और आपत्तियों के स्वामी हैं, ये सब विपत्ति में डालते हैं। अब देख कितनी उल्टी बात है, सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो संसार का व्यक्ति इनसे अपनी विपत्ति दूर करना चाहता है भोग के साधनों से, क्योंकि वो विपत्ति में इसलिए है कि ये साधन नहीं है उसके पास।
1: और श्रीराम कह रहे हैं कि आपत्तियों का साधन,
0: ये कहते हैं
1: मतलब जो सांसारिक संपदाएं हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं वो।
0: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि ये सब पाप स्वरूप है, मतलब आपको पाप से पाप करवाएगा। अच्छा, पाप का मतलब होता है कि पाप हम किसी दूसरे के संदर्भ में करते हैं, दूसरे के संदर्भ में तो करते ही करते हैं, अपने प्रति भी तो पाप करते हैं कि हमने अपने जीवन को एक ऐसी क्रिया में लगा दिया जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप देखें जीवन भर जिन चीजों को हम संकलित करते हैं एक दिन उसी को छोड़ के जाते हैं, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी जीवन भर संकलन लगा हुआ और क्या क्या नहीं करता उस संकलन के लिए, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अज्ञानता है कि नहीं। अगर आप देखें तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने कहा भी गया है कि आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब की आवश्यकता पूरी करने में पृथ्वी समर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने में पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा।
1: बिल्कुल, लालच को तो नहीं पूरा किया
0: नहीं जा सकता, इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और हर आदमी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है जो कभी पूरी ही नहीं होती। तो ये बात कहने सुनने का नहीं है, ये बात निरंतर चिंतन का है, और राम जी ने तीर्थ यात्रा के दौरान यही चिंतन किया और देखा कि लोग बात तो वो सारे कर रहे हैं जिन बातों को हम कहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं जो व्यवहार कर रहे हैं उस ज्ञान की बातों से बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। तो वो उनकी स्थिति है, और कहते हैं कि मूढ़ बुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और ये बात क्या आज नहीं है समीचीन। आप देखें जिन जिन में आपने सुख देखा था, अगर वो सुख था कुछ समय के लिए था, क्षणिक था, तो फिर वो क्षणभंगुरता हुई ना, तो आपको आगे जिन जिन चीजों के न होने की वजह से आज आप दुखी हैं, तो उस दुख का भी शमन इस ज्ञान से करना था, पूर्व के अनुभव से करना था, लेकिन वो करने के बजाय आपके जीवन में वो चीजें नहीं है, उसके लिए आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। तो ये भोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राम जी ने बताया कि यहाँ पर लोग इधर उधर भटकते रह रहे हैं लोभ के कारण, जबकि सच ये है कि ये सारे जो भोग हैं ये पाप में डालते हैं, ये मनुष्य को विपत्ति में डालते हैं, और आपत्तियों का स्वामी कहा गया इन्हें। ये स्वामित्व है इनमें आपत्ति लाने का और हम लोग आप विपत्ति मिटाने का स्वामी बना के बैठे
1: हैं, बनाकर बैठे हैं और उसी को जुटाने में पूरा जीवन खर्च
0: लगाए हुए हैं। जी जी,
1: तो बहुत संक्षेप में एक बात आप बताएं कि चूंकि श्री राम कह रहे हैं कि जो सांसारिक संपदाएं हैं उनसे विपत्ति आती है,
0: जी जी,
1: तो संपदा को किस दृष्टि से मनुष्य देखे?
0: बिल्कुल, सांसारिक इसका अर्थ कदापि ये नहीं हुआ कि कोई ये समझ ले कि हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सत्य को आप जानें और अपने जीवन को जीवन मुक्त की भांति जिएं, बंधन में ना जिएं। वो कहते हैं ना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो देखिए, तो ये जैसे नदी है, नदी का कोई मार्ग नहीं है और न उसने कोई चुनाव किया है। जैसे हमारे एक मित्र है, वो नर्मदा परिक्रमा करें तो कहीं नर्मदा जी बहुत सक्रिय हैं, कहीं बहुत विशाल रूप है और सागर में मिलके तो सागर हो जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये संसार की यात्रा में आप निर्विघ्न और निश्चिंत रहें, मतलब द्वंद ना पालें, क्योंकि द्वंद पाल करके आप अपने सामर्थ्य को घटा लेंगे।
1: जी जी,
0: आपसे जो होने की संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी और संसार की संपदाएं सदा वंचना ही करती रहती हैं। हाँ, ये राम जी कह रहे हैं
1: जी
0: कि सदा वंचना करती हैं, क्योंकि उनके वैराग्य में ऐसा उनको दिखा है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं और उनकी सगुण राशि का नाश करती हैं। अब देखिए, संसार जो है आपके सगुण को नष्ट करता है, सद्गुण का
1: जी जी जी,
0: और तरह तरह के दुख दिया करता है, दुखों का जाल बिछा देता है, धन वैभव की चिंताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए मुझे ये आनंद नहीं देते।
1: जी जी, जी। तो ये एक कारण उनके वैराग्य का है और भी उनके मन में बहुत सी बातें हैं,
0: बहुत सारी बातें हैं जी,
1: तो वो बातें हम एक एक कर आगे सुनेंगे। चूंकि अब इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है तो इसी बिंदु पर हम ठहरते हैं और अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। आपने आज बहुत ही सुंदर व्याख्या की भगवान श्री राम की वैराग्य दशा की, यही चर्चा आगे हम जारी रखेंगे अगले अंक में। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने भगवान श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा सुनी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनियांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद, जिसमें आज का विषय था श्री राम की वैराग्य दशा। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत की सुनीता सिंह ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है भारत विभूति। आज का कार्यक्रम पंडित गोविंद वल्लभ पंत को समर्पित है।
3: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और आज भारत विभूति के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम बात करेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी पंत की। श्रोताओं, इस तारतम्य में आज मेरे साथ हैं मेरे रेडियो मित्र
4: दीपेश
3: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, भारत विभूति में आज बहुत ही खास दिन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हिमालय की गोद में अपनी आंखें खोली और जिनके इरादे उसी हिमालय जितने अटल और अडिग रहे। उत्तराखंड की वादियों से निकला एक ऐसा लड़का जो पहले एक होनहार वकील बना, फिर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी, फिर उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री और आखिरकार भारत का गृह मंत्री, और इन सब से भी बढ़कर वो थे एक सच्चे इंसान जिन्होंने कभी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ, आज हम सुनेंगे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जीवन गाथा। साथियों, ये नाम केवल दो शब्द का नहीं है, ये तो एक पूरा युग है, एक संघर्ष है, एक विचारधारा है। ये नाम उन लाखों लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रिटिश दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मुक्ति की राह तक रहे थे। सोचिए, एक युवक जिसकी वकालत चमक रही थी, जिसका भविष्य उज्जवल था, जिसके पास सुख सुविधाएं और समृद्धि के सारे द्वार खुले हुए थे, उसने ये सब ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, माँ भारती की पुकार। उस पुकार को सुनकर उन्होंने अपनी कलम और मुकदमे की फाइलें एक तरफ कर दी और थाम लिया तिरंगा।
4: जेल की अंधेरी कोठरियां उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां उनके इरादे को नहीं झुका सकी, क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हो उसे न ठंड सताती है, न भूख, न कारागार। और जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे। देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस विशाल राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। भारत वर्ष की पावन धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, त्याग और कर्मनिष्ठा से इतिहास के पन्नों को

0: अपना अतुलनीय योगदान दिया। वो एक ऐसे राजनेता थे जो जनता के दिलों में बसते थे, जिनकी सरलता, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मित्र और विरोधी दोनों ही मानते थे। भारत सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 1957 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से अलंकृत किया। ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया। पंत जी का जीवन और कार्य आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है।
1: पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वायु और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में पले बढ़े गोविंद बल्लभ में बचपन से ही उस पर्वत सी दृढ़ता और स्थिरता विद्यमान थी। उनके पिता श्री मनोरथ पंत एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य। माता का नाम गोविंदी बाई था जो एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। माता पिता दोनों ने बालक गोविंद में संस्कारों के बीज बचपन से ही बोए। माता से उन्हें करुणा, सेवा भाव और धैर्य की शिक्षा मिली तो पिता से अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के गुण प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही गोविंद बल्लभ एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। वे पढ़ाई में अपनी आयु के अन्य बालकों से सदैव आगे रहते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। गणित, इतिहास और भाषाओं में उनकी विशेष रुचि थी। उनके अध्यापक उनकी प्रतिभा को देख कर चकित हो जाते थे और अनुमान लगाते थे कि यह बालक एक दिन अवश्य महान बनेगा।
0: बिल्कुल श्रोताओं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। उसके बाद पंत जी उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज चले गए। वहां उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया जो उस समय उत्तर भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यहां उनका परिचय राष्ट्रवादी विचारधारा और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से हुआ। इलाहाबाद में पंत जी का मन केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताओं, सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों में सक्रिय हिस्सेदारी की। इलाहाबाद उन दिनों भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और कई बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन संपर्कों ने पंत जी की राजनीतिक चेतना को और भी अधिक पैना कर दिया।
1: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री LLB प्राप्त करने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। उनकी वकालत का एक विशेष गुण यह था कि वे सदा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। कमजोर और गरीब लोगों के मुकदमे वे प्रायः निशुल्क लड़ते थे। उनकी तर्क शक्ति और वाक्पटुता के सामने बड़े बड़े वकील भी परास्त हो जाते थे। कुछ ही वर्षों में वे काशीपुर और आसपास के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाने लगे। परंतु वकालत की समृद्धि और सुख सुविधाएं उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उनके भीतर देश सेवा की ललक प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो पंत जी ने बिना किसी दुविधा के अपनी सफल वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की पुकार पर उठ खड़े हुए। यह उनके त्याग और देशभक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वे सफल रहे।
0: फिर सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पंत जी ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने जनजागरण का काम किया और हजारों लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। इस कुप्रथा के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों और उनके सामान को बिना किसी पारिश्रमिक के ढोना पड़ता था। ये न केवल शोषण था बल्कि मानवीय गरिमा का घोर अपमान भी था। पंत जी ने जनता को इस दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
1: 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के पवित्र पर्व पर बागेश्वर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने कुली बेगार प्रथा से संबंधित कागजात सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस आंदोलन की सफलता ने पंत जी के नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया और कुमाऊं में उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया तो पंत जी ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने और अन्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने की अपील जनता से की। इसके फलस्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल की कठोर परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया, परंतु उनके हौसले को जरा भी नहीं तोड़ सका। कारागार में भी वे अपने साथी कैदियों का मनोबल बनाए रखते और देश की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते। उनकी कई जेल यात्राएं हुईं और हर बार वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आए। उनका यह अटूट संकल्प जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
0: वहीं अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का आह्वान किया। पंत जी ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उन्हें अहमदनगर किले में नजरबंद रखा गया। अहमदनगर किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने 3 साल से अधिक का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वतंत्र भारत के भविष्य की योजनाएं बनाई और अपने साथियों के साथ राजनीतिक विचार विमर्श किया। ये कठिन काल उनके लिए एक अनमोल अनुभव था जिसने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया।
1: सन 1923 में पंत जी पहली बार संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने। विधानसभा में उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा और तेज लेकर आई। वे एक प्रखर और निर्भीक वक्ता थे। उनके भाषण तर्कपूर्ण, तथ्यों पर आधारित और ओजपूर्ण होते थे। उन्होंने विधानसभा में किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। सन 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में भारी बहुमत प्राप्त किया। पंत जी संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार और प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, किंतु सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मौजूदा सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।
0: 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जब उत्तर प्रदेश के लिए पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो सर्वसम्मति से पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम सामने आया। वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये पद उन्हें उनकी योग्यता, अनुभव और जनप्रियता के चलते मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सन 1951 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत जमींदारों की अतिरिक्त भूमि सरकार ने ले ली और उसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। इस एक कदम से लाखों किसान परिवारों की जिंदगियां बदल गई जो पीढ़ियों से जमींदारों के अत्याचार सहते आ रहे थे।
1: उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में नए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई। उनका मानना था कि शिक्षित नागरिक ही देश की सबसे बड़ी संपदा है। महिला शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में सड़क, सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए उन्होंने कई सुधार किए। वे 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस पूरे कार्यकाल में उनकी ईमानदारी और कुशलता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा।
0: दिसंबर सन 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक था। पंत जी ने इस पद को अत्यंत दक्षता और कुशलता से संभाला। गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन था। देश की आजादी के बाद ये सबसे जटिल और संवेदनशील प्रश्न था। विभिन्न भाषाई समूह अपने अपने राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर हिंसा भड़की हुई थी। पंत जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश में नए राज्यों का गठन हुआ।
1: हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में पंत जी की भूमिका अग्रणी रही। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में जोरदार तर्क रखे और यह सुनिश्चित किया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस निर्णय से अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान कम न हो। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। अनेक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विवादों को उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से शांतिपूर्वक सुलझा लिया। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से उन्होंने शासन तंत्र को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया। उनके नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता और अधिक सुदृढ़ हुई।
0: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जीवन भर सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयां, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध सदैव अपनी आवाज उठाई। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई नीतियां भी बनाई और उन्हें कार्यान्वित भी किया। वे गांधी जी के इस विचार को मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है और इसे दूर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति और सरोकार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता है। उन्होंने किसानों को शोषण से मुक्त करने के लिए न केवल जमींदारी प्रथा खत्म की, बल्कि कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा।
1: पंत जी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के प्रति सदैव सजग रहे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदार बनाने पर जोर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का जाल बिछाया गया। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए नए कॉलेजों की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देकर उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में भी काम किया।
0: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का व्यक्तित्व बहुआयामी और अत्यंत ही प्रभावशाली था। वो शारीरिक रूप से लंबे, चौड़े और तेजस्वी पुरुष थे। उनकी आंखों में एक असाधारण चमक और दृढ़ता थी। जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में एक ऐसा जादू था जो श्रोताओं को बांध लिया करता। उनके भाषण कभी खोखले नहीं होते थे। वो हमेशा तथ्यों और तर्कों पर आधारित होते। उनका सबसे बड़ा गुण था उनकी अटूट ईमानदारी। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनके शासन काल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था और यही कारण था कि जनता में उनके प्रति इतना विश्वास और सम्मान था।
1: सरलता उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। वे एक साधारण कुर्ता धोती में रहते थे। उन्हें आडंबर और प्रदर्शन से आपत्ति थी। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद वे आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बात करते, उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें हल करने का प्रयास करते। उनका कोई भी कार्यालय आम नागरिकों के लिए खुला रहता था। पंत जी का जीवन दर्शन अत्यंत व्यवहारिक था। वे आदर्शवादी थे, किंतु हवा में नहीं जीते थे। उनका मानना था कि देश की सेवा शब्दों में नहीं, कर्म से होती है। वो राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनके लिए राजनीति एक मिशन था, व्यवसाय नहीं। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर रखा। पंत जी साहित्य और संस्कृति में भी गहरी रुचि रखते थे। हिंदी साहित्य के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। कुमाऊनी लोक संस्कृति और पर्वतीय कला के प्रति उनका प्रेम जीवन भर बना रहा। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी वे पुस्तकें पढ़ने के लिए समय निकाल लेते थे।
0: सन 1957 में भारत सरकार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। भारत रत्न की घोषणा होने पर सारे देश में हर्षोल्लास का माहौल था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो खास तौर से जश्न मनाया गया। इस सम्मान को पाकर पंत जी जरा भी गर्वित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक यही कहा कि ये सम्मान उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दिया। ये उनकी विनम्रता और उनके महान व्यक्तित्व का ही प्रतीक था। भारत रत्न मिलने के बाद भी पंत जी की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उतनी ही सरलता, लगन और समर्पण के साथ अपना काम किया करते। इस सम्मान ने उन पर और अधिक जिम्मेदारियों का भार जो डाल दिया था। उन्होंने देश की सेवा में और अधिक परिश्रम किया।
1: पंडित गोविंद बल्लभ पंत का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम सालों में धीरे धीरे गिरने लगा था। कई वर्षों की जेल यात्राएं, संघर्ष और अथक परिश्रम ने उनके शरीर पर अपना प्रभाव डाला। वो हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। डॉक्टर उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह देते थे, परंतु पंत जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। बीमार होने के बावजूद वो अपने कार्यालय जाते रहे, फाइलें देखते रहे और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करते रहे। उनके सहयोगी और मित्र उनकी समर्पण भावना से अभिभूत होते थे और चिंतित भी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें विश्राम करने की सलाह दी, किंतु पंत जी कहते थे, जब तक देश को मेरी आवश्यकता है मैं विश्राम नहीं करूंगा।
0: 7 मार्च 1961 को ये महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। नई दिल्ली में उनका निधन हुआ और जब ये दुखद समाचार देश भर में पहुंचा तो शोक की एक लहर सारे देश में दौड़ गई। संसद में उनके निधन पर श्रद्धांजलि सत्र आयोजित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के सबसे महान सपूतों में से एक बताया। राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनकी अंत्येष्टि में लाखों लोगों ने उपस्थित होकर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का शरीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके नाम पर कई संस्थाएं, सड़कें, पार्क और भवन बनाए गए हैं जो उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए हैं।
1: इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उनके नाम पर स्थापित है, जो सामाजिक शोध के क्षेत्र में देश की एक प्रमुख संस्था है। उत्तराखंड के पंत नगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका नामकरण उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से किया गया। दिल्ली में उनके नाम पर एक प्रमुख अस्पताल भी है। उनके जन्मदिन यानी 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार इसे राज्य स्थापना दिवस की भावना से जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके जीवन पर निबंध, भाषण और नाटक प्रतियोगिताएं होती हैं। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और बलिदान की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है।
0: भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक टिकट भी जारी किया है। संसद भवन में उनका चित्र स्थापित है। लखनऊ में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है जो प्रतिदिन लाखों लोगों को उनकी याद दिलाती है।
1: पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से एक हैं, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, पारदर्शी, प्रेरणादायक और अनुकरणीय। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विश्वास के साथ जिया कि एक व्यक्ति के त्याग और परिश्रम से राष्ट्र का भाग्य बदला जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके सुधार गृह मंत्री
1: कर्मों में होती। सच्ची राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। सच्ची सफलता व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, जन कल्याण में है। उनका जीवन इन्हीं मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। आज जब हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हैं तो हमारे मन में एक ही संकल्प उठना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को और अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। पंत जी अमर है और जब तक भारत है तब तक याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा था कि देश की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम भारत विभूति में हम बात कर रहे थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। आज के कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन में थे मैं यानी स्वाति और मेरे सहयोगी
0: दीपेश,
1: और इस कार्यक्रम का लेखन किया था अखिलेश कुमार वर्मा ने। तो इसी के साथ ये रेडियो कार्यक्रम भारत विभूति यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी मित्र को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति, आज की कड़ी पंडित गोविंद वल्लभ पंत को समर्पित थी।
3: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।

1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात त्रगनौर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम

0: फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डी सूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सेंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डी सूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही डी सूसा ने नाव पर कदम रखा, बहादुर ने अपने आदमियों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जवाबी कार्यवाही में आसपास के नाव से पुर्तगाली सैनिकों ने सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: खेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज़ाद हिंद। आज की कड़ी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित है।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: राणा का ओज भरा आनन, सूरज समान चमचमा उठा, बन महाकाल का महाकाल, भीभाण भाला दमदमा उठा। रण यात्रा करते ही बोले, राणा की जय, राणा की जय। मेवाड़ सिपाही बोल उठे, शतबार महा राणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय। जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय।

0: कहने का अवसर दिया है, कभी मीरा जैसी भगवत भक्त के गुण गाने का मान दिया है, कभी पन्ना की स्वामी भक्ति की कहानी दी है और कभी राणा प्रताप की देशभक्ति की कथा कहने का गौरव दिया है। उदय सिंह के सुपुत्र के क्या कहने।
1: आकर्षक व्यक्तित्व, लंबा कद, मजबूत गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछों और चौड़े सीने वाले महाराणा के मुख पर इतना तेज था कि उनका प्रभाव उनसे मिलने वाले हर एक शख्स पर तुरंत पड़ता था। कोई भी उनके आभा मंडल से अछूता नहीं रह पाता था। उनके रक्त के हर एक कण में वीरता का वास था और देश प्रेम तो जैसे हर एक सांस में बसा था।
0: राणा के कुल के महान शासक राणा सांगा को कौन नहीं जानता। उन्होंने बाबर जैसे कुशल मुगल सेनापति और शासक से टक्कर ली। राणा प्रताप ने भी अकबर से बैर लिया, पर प्रताप के पिता उदय सिंह बड़े विलासी थे। उनके 18 विवाहों से उत्पन्न 24 पुत्रों में से सबसे बड़े प्रताप को राज्य की बागडोर न देते हुए उन्होंने अपनी प्रिय रानी भट्टियाणी के पुत्र जगमाल को राज्य सौंपा।
1: उदय सिंह के शासनकाल में ही शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर ने कब्जा कर लिया था और राजपूतों का मान सम्मान हाशिए पर था। ऐसे में उदय सिंह की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक था और उस समय राजपूत राजनीति में प्रताप से अधिक सक्षम और योग्य नेता और कोई नहीं दिखाई पड़ता था।
0: प्रताप का बचपन ही राणा सांगा की वीरता की कथाएं सुनते बीता था। ऐसे में वो भी चित्तौड़ का पतन कैसे बर्दाश्त करते। उनकी रग रग में एक ही राग था कि राजपूत का धर्म है देश के लिए जीवन की आहुति देना। बस निश्चय कर लिया कि जो भी हो चित्तौड़ वापस लेकर ही रहना है।
1: और आगे की कहानी इस सुंदर गीत के बाद।

0: मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। बस ये सुनना था कि मानसिंह क्रोध से आग बबूला हो गया। अन्न का अपमान न किया उसने, चावल के दो दाने उठा के पगड़ी में रख लिए, पर जाते जाते राणा प्रताप को युद्ध की दावत भी दे गया।
1: आगे क्या हुआ इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है, पर पहले सुनेंगे राणा प्रताप की भूमिका ये सुंदर गीत।

0: राणा के पास शौर्य और तेज तो बहुत था, पर सैनिक नहीं थे। पर फिर भी 13 जून 1576 के हल्दीघाटी के युद्ध में राजपूतों ने मुगल सेना को लोहे के चने चबवा दिए। भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा का प्रिय घोड़ा चेतक बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय संसार से कूच कर गया। राणा दुखी हो गए और उन्होंने पूरी शक्ति से मुगलों के दांत खट्टे कर देने का निश्चय कर लिया।
1: सारी फसलें जला देने का हुक्म हुआ ताकि मुगल सेना अन्न को तरस जाए। पर अब ये हालत थी कि राणा के सैनिक ही भूखों मरने लगे। उसी समय राणा के यहाँ घास की रोटियां पकाई गईं, पर उनकी बेटी की रोटी जानवर ले गया और उसके विलाप से जो पीड़ा राणा को हुई, उसी वजह से राणा ने अकबर को संधि पत्र पहुंचवाया था।
0: पृथ्वीराज अकबर के यहाँ राजकवि था। उससे राजपूतों का झुका सर देखा न गया और उसने वो संधि पत्र झूठा होने की खबर फैला दी। इधर उसने राणा प्रताप को एक ओज से भरी कविता लिखकर अकबर से दोबारा युद्ध करने को उकसाया। आखिरकार स्वदेश प्रेम ने पिता के प्रेम पर विजय पाई। भीलों को एक बार फिर एकत्रित करके राणा ने सैन्य शिक्षा दी और सारे कार्य एक के बाद एक अपने आप राणा के हित में होते रहे।
1: राणा के पास कुछ नहीं था, न राजधानी, न कोई धन, न दौलत। मुट्ठी भर सैनिकों को छोड़ कोई सहायता को भी राजी न था। पर फिर भी राणा प्रताप को अकबर से टक्कर लेने से कोई रोक नहीं सका। और टक्कर भी कैसी कि इतिहास अपनी धुरी पर चलना छोड़ मुंह बाए बस देखता रह गया और वीर राणा प्रताप ने अकबर तक पर अपना प्रभाव छोड़ा। धन्य है वो माँ और महान है वो धरती जिस पर राणा प्रताप जैसे उज्जवल चमकीले तारे ने जन्म

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर सागर, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं रीता तिवारी।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे बघेली गायन। कलाकार हैं रीता तिवारी और उनके साथी

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना श्रृंखला के तहत।
1: मैं रीवा से आई हूँ और बघेली प्रस्तुतियाँ कुछ लेकर क्रमबद्ध कि जन्म से लेकर विवाह तक के जो भी संस्कार हैं और यहाँ मंच के माध्यम से सांस्कृतिक समिति और जनजाति संग्रहालय और उपस्थित सभी सम्मानित का वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है तो पहले गणेश वंदना की जाती है।

सियावर रामचंद्र के जय हो। और जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो कुआं पूजन का भी एक गीत है, जब कुआं पूजने जाते हैं तो गलहाई गीत है ये।

और जब हमारे यहाँ व्रत बंद होता है तो गांव की भाषा में बरुआ कहा थे बघेली में, तो बरुआ में जब बरुआ रिसाई जहाँ लागत होते या गलिहाई गाना गावा जाता है,

और व्रतबंध के बाद शादी होती है, जब शादी का ये गीत है बेलनहाई, जब पूरी उड़ी बेला थे शादी के टाइम में, तो यह गाना गावा थी।

और जब हमारे यहाँ काज होता तो 15 दिन पहले भिनसरहा उठ के और सब लेडीजें गांव में लगती हैं सुहाग 4 बजे तड़का, कहा था कौआ न बोला गाँव में का चाहिए सुहाग, तो वह सुहाग की प्रस्तुति है आप

है ये, इसको गाने से मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि ये बिटिया की विदाई का गीत है और आप सभी समझ सकते हैं कि एक बच्चे को जब विदा की जाती है तो कैसा लगता है। अंजलि है ये हमारे यहाँ बघेली की।

0: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे रीता तिवारी और उनके साथियों का बघेली गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रीता तिवारी का बघेली गायन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: सन 1498 में जब वास्कोटी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात त्रगनौर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने जब डेट्रॉइट से विदा ली तो वहां लौटने की बात उनके मन में बिल्कुल न थी, परंतु घटना चक्र ऐसा घूमा कि 2 सप्ताह बाद ही 9 मार्च को वे पुनः वहां आ पहुंचे। 9 मार्च के डेट्रॉइट जनरल में छपा था कि हिंदू सन्यासी विवेकानंद शिकागो से आज रात डेट्रॉइट लौटेंगे और श्री पामर का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। वे ओपेरा हाउस में भारत में पश्चिमी मिशनरी विषय पर व्याख्यान देंगे।
1: लगभग हजारों श्रोताओं ने ये व्याख्यान सुना था। डेट्रॉइट ट्रिब्यून में इसका विवरण प्रकाशित हुआ।
2: स्वामी जी ने सर्वप्रथम भारत की सामाजिक अवस्था का वर्णन किया, तत्पश्चात उन्होंने स्पेन व पुर्तगाल से आने वालों की ध्वंस लीला का उल्लेख किया। इसके बाद आए अंग्रेज मिशनरी, परंतु वे भारतवासियों से मेलजोल न रखकर अपने अभिजात वर्ग की रक्षा में व्यस्त रहे और गरीबों की अन्न और वस्त्रहीनता का फायदा उठाने लगे। उन्होंने और भी कहा, अधिकांश मिशनरी भारतीय शास्त्रों के साथ अपरिचित, अर्ध परिचित तथा अपने कार्य के अनुपयुक्त हैं, परंतु ऐसे निस्वार्थ धार्मिक मिशनरी हैं कहाँ। वे तो आजीविका के रूप में धर्म प्रचार करने जाते हैं, और इन राष्ट्रों के बारे में चर्चा करनी हो तो कहना पड़ेगा कि उन लोगों ने पृथ्वी पर खून की नदियां प्रवाहित की हैं। उन्होंने और भी कहा कि सभी धर्म मूलतः सत्य हैं, अतः मिशनरियों को चाहिए कि वे किसी राष्ट्र या संप्रदाय का गर्व ना पालें, क्योंकि भगवान की संतानों के बीच भला संप्रदाय भेद कैसे होगा।
1: ये व्याख्यान देने के बाद स्वामी जी ने स्वयं बड़े संतोष का अनुभव किया था। अगले दिन हेल बहनों को अपने पत्र में उन्होंने सूचित किया,
3: इस समय मैं श्री पामर का अतिथि हूँ। ये बड़े ही सज्जन हैं। परसों रात उन्होंने अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था, जिसमें से हर एक की आयु 60 वर्ष के ऊपर थी। इस मंडली को वे वयोवृद्ध बालक संघ कहा करते हैं। एक नाट्यशाला में मैंने 2.5 घंटे तक व्याख्यान दिए हैं, उनमें ये अंतिम ही सर्वोत्तम था। सुनकर श्री पामर आनंद विभोर थे और श्रोतागण मंत्रमुग्ध बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर ही मुझे पता चला कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा। मैं नारी पत्नी है, पूर्व में वो मां है। भारत में सतीत्व का सर्वाधिक सम्मान है। नारी के शरीर से जगदम्बा ही अभिव्यक्त होती हैं।
1: श्रोतागण पाश्चात्य और भारतीय नारियों की तुलना सुनकर अचंभित हो गए। इस प्रकार 30 मार्च तक डेट्रॉइट में बिताकर स्वामी जी इस नगर से विदा हुए, पर बाद में एक बार सन 1896 में पुनः वहां आकर लगभग 2 सप्ताह तक व्याख्यान और कक्षाएं चलाई। उस बार के डेट्रॉइट निवास के बारे में श्रीमती फंकी ने लिखा है,
4: उनके साथ आए संकेत लेखक तथा विश्वस्त गुडविन, विभिन्न परिवारों के निवास के लिए वहां पर एक छोटा सा रिचेल्यू होटल है, उसी के एक कमरे में वे लोग रहते थे और कक्षाओं एवं व्याख्यान के लिए बड़ा बैठक खाना उपयोग में लाते थे। तथापि भीड़ के अनुपात में वो कमरा छोटा पड़ता था, अतः अनेक लोगों को लौट जाते देखकर हमें अत्यंत दुख होता था। कमरा, हॉल और सीढ़ी सब लोगों से भर जाता था। उस समय वे केवल भक्ति से परिपूर्ण रहते थे। भगवत प्रेम के ही वे

0: थी और कई सौ लोगों को लौट जाना पड़ा। स्वामी जी ने वहां उपस्थित अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया था। वहां उनके दिए हुए दो व्याख्यानों का विषय था, पाश्चात्य जगत को भारत का संदेश तथा विश्व धर्म का आदर्श। उनके अति मनोरम तथा विद्वतापूर्ण व्याख्यान हमने सुने। उस रात आचार्य देव को मैंने जिस रूप में देखा वैसा और कभी नहीं देखा। उनके सौंदर्य में ऐसा कुछ था जो इस पृथ्वी का नहीं था।
1: सम्मान तथा सफलता के बीच भी स्वामी जी का वैराग्य किस प्रकार अभिव्यक्त हो उठता था, इसका परिचय उस काल के एक पत्र में प्राप्त होता है।
2: श्री होल्डन आज सुबह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए खूब समझा रहे थे, परंतु मैं थोड़ा सा बोस्टन और न्यूयॉर्क देख लेने को इच्छुक हूं। सच कहता हूं, जो जो मुझे लोकप्रियता मिलती जा रही है और बोलने में आसानी होती जा रही है, त्यों त्यों मैं इससे उब रहा हूं। इन सब व्यर्थ की बातों से भगवान मुझे बचाएं। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को मंजूर हुआ तो मैं बोस्टन या न्यूयॉर्क में विश्राम करूंगा।
1: ठीक इसी समय उन्होंने अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों की सहायता से व्याख्यान कंपनी से नाता तोड़ लिया था। उनके 15 मार्च के पत्र में है,
2: पहले व्याख्यान के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। हॉल का किराया ही था $150। मैंने होल्डन को विदा कर दिया है, एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है, देखें वो अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं।
1: व्याख्यान विषयक अनुबंध रद्द करने के विषय में श्रीमती बर्क ने लिखा है,
0: स्वामी जी जिस समय श्री पामर के मकान में निवास कर रहे थे, संभवतः तभी स्वामी जी का व्याख्यान कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हुआ था। यह अनुबंध 3 वर्षों के लिए हुआ था, परंतु 4 महीनों के भीतर ही वो उन्हें एक बड़ा बंधन प्रतीत होने लगा। संभवतः स्वामी जी के व्यवसायी मित्र ही उन्हें उससे मुक्ति दिलाने में सफल हुए थे, क्योंकि भगिनी क्रिस्टीन के मतानुसार प्रभावशाली मित्रों के हस्तक्षेप के बिना उससे मुक्त होने का कोई उपाय न था। परंतु इस अनुबंध को रद्द करने से उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी ने तब तक अपने भारतीय कार्य के लिए जितना कुछ संचय किया था वो लगभग पूरा ही उन्हें खो देना पड़ा था।
3: ये सारी बातें उन्होंने खुद श्रीमती हेल को लिखी थी। फिर निरंतर आलोचनाओं और आक्रमणों से वे ऊब गए थे। उन्होंने श्रीमती हेल को लिखा,
2: अब तक सब कुछ ठीक है, परंतु पता नहीं क्यों जब से यहां आया हूं मेरा मन बड़ा उदास है। व्याख्यान आदि निरर्थक चीजों से मैं बिल्कुल थक गया हूं। सैकड़ों प्रकार के नर पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है। मैं तुम लोगों को अपनी रुचि की बात बताता हूं। मैं लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु मैं गंभीर विचार कर सकता हूं और उसके फलस्वरूप जब जोश में आता हूं तो वाणी के स्फुलिंग निकाल सकता हूं। पर यह होना चाहिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बीच ही, फिर वे यदि चाहें तो मेरे विचारों को दूर दूर तक प्रसारित करें। चिंतन करने के लिए मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए और विशेषकर तब जबकि विचार आध्यात्मिक हो। चूंकि स्वाधीनता का यह दावा कि मनुष्य मशीन नहीं है समस्त धार्मिक विचारों का सार है, अतः यंत्र के समान नियम पूर्वक इस चिंतन में अग्रसर होना संभव नहीं। हर चीज को यंत्र के स्तर पर खींच लाने की प्रवृत्ति ही पाश्चात्यों की अपूर्व समृद्धि का कारण है, परंतु इसी प्रवृत्ति ने समस्त धर्म को उनके द्वार से विताड़ित भी किया है। जो थोड़ा सा बचा है उसे भी पश्चिम ने नियमबद्ध कवायद सा बना लिया है। वस्तुतः मैं तूफानी कतई नहीं हूं, बल्कि हूं ठीक इसके विपरीत। मैं जो चाहता हूं वो यहां नहीं है और मैं इस तूफानी वातावरण को और अधिक काल तक सहन करने में असमर्थ हूं। स्वयं पूर्ण बनने का प्रयास करना तथा कुछ अन्य नर नारियों को पूर्ण बनने में सहायता करना पूर्णता की उपलब्धि का यही मार्ग है। भला करने से मेरा तात्पर्य है कुछ असाधारण मानवों का विकास करना, न कि भैंस के आगे बीन बजाते हुए समय, स्वास्थ्य तथा शक्ति का क्षय करना।
3: व्याख्यान कंपनी के साथ संबंध तोड़ने के मूल स्वरूप उन्हें अपना अर्जित प्रायः सारा धन ही त्याग देना पड़ा था। कंपनी उन्हें कैसे ठगती थी उसके बारे में उन्होंने आला सिंगा को 11 जुलाई 1894 में लिखा था।
2: डिट्रॉइट के व्याख्यान से मुझे $900 अर्थात 2700 रुपए मिले थे। अन्य व्याख्यानों में से एक के द्वारा मैंने एक घंटे के अंदर $2,500 अर्थात 7,500 रुपए कमाए, परंतु मुझे मिले $200 ही। एक धोखेबाज भाषण कंपनी मुझे ठग रही थी, अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है।
3: आपको जानकारी दे दूं कि उन दिनों डॉलर की विनिमय दर 3 रुपए थी।
4: दूसरी बार डिट्रॉइट आकर स्वामी जी पहले श्री पामर के यहाँ, फिर श्रीमती वागले के घर पर ठहरे थे। इस बारे में उन्होंने एक पत्र में मजेदार बात लिखी थी।
2: मैं बूढ़े पामर के साथ आनंद पूर्वक हूँ, वे बड़े विनोदी तथा भले वृद्ध हैं। हाँ, मेरे बारे में सबसे मजेदार बात लिखी है यहाँ के एक समाचार पत्र ने। लिखा है, तूफानी हिंदू यहाँ आ पहुंचा है और वो श्री पामर का अतिथि है। श्री पामर हिंदू हो गए हैं और भारत जा रहे हैं। बस उनकी जिद यही है कि दो चीजों में सुधार होना चाहिए। प्रथम ये कि जगन्नाथ जी के रथ में श्री पामर के लॉग हाउस फार्म में पले हुए फ्रेंच नस्ल के घोड़े जोते जाएं, और द्वितीय ये कि हिंदुओं के पवित्र गौवंश में जर्सी गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। श्री पामर उक्त नस्ल के घोड़ों तथा गायों के बड़े शौकीन हैं और उनके लॉग हाउस फार्म में दोनों का बाहुल्य है। श्री पामर के घर अधिक दिन बिताने से श्रीमती बागले नाराज हो गई हैं, अतः आज उनके यहां लौट आया। वैसे श्री पामर के घर में दिन बड़ी तफरीह में कटे। वे बड़े ही मौजी और हंसमुख आदमी हैं। मेरे चले आने से वे बड़े दुखी थे, लेकिन मैं विवश था।
4: स्वामी जी के पत्रों से ही ज्ञात होता है कि वे मध्य पश्चिम का कार्य समाप्त कर पूर्वी अंचल में जाने के लिए व्यग्र थे। उस अंचल में जाने से पूर्व 23 फरवरी को वे ओहियो प्रांत के आडा शहर में और वहां से डिट्रॉइट लौटकर पुनः 20 मार्च को मिशिगन प्रांत के बेसिटी तथा सेगिना नगर में गए थे।
3: इन्हीं यात्राओं के दौरान उनकी भेंट अमेरिका के लोकप्रिय अक्षयवादी वक्ता इंगरसोल से हुई। उन्होंने स्वामी जी को सावधान कर दिया था कि वे अति साहसी या अति स्पष्टवादी न हो। इसका कारण पूछने पर इंगरसोल ने कहा था,
5: 50 वर्ष पूर्व इस देश में प्रचार के लिए आने पर आपको फांसी से लटका दिया जाता या फिर जिंदा जला दिया जाता। यहाँ तक कि इसके कुछ और काल बाद आने पर भी आपको पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया जाता।
4: स्वामी जी तथा इंगरसोल के अनुभवों के बीच एक अंतर था। इंगरसोल पूरे धर्म के ही विरोधी थे, जबकि स्वामी जी स्वयं आस्तिक, ईश्वर प्रेमी तथा ईसा मसीह के प्रति असीम श्रद्धावान थे। इंगरसोल अतीन्द्रिय सत्य में अविश्वासी थे, जबकि स्वामी जी विश्वासी थे। इंगरसोल धर्मध्वंसी थे, जबकि स्वामी जी केवल संकीर्णता एवं पाखंड के विरोधी थे। अतः स्वामी जी के भाग्य में विरोधी के साथ समर्थन भी यथेष्ट जुटा था। एक घटना के द्वारा इन दोनों के बीच के पार्थक्य का स्पष्ट बोध हो जाता है। एक कक्षा के श्रोताओं को स्वामी जी ने बताया था,
2: एक बार इंगरसोल ने मुझसे कहा था, मेरा विचार है कि संसार से जितना अधिक संभव हो लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। संतरे को निचोड़कर जितना अधिक हो सके रस निकाल लेना होगा, क्योंकि इस जगत के अलावा अन्य किसी लोक के अस्तित्व के बारे में हम निश्चित नहीं हैं। मैंने उत्तर दिया, इस जगत रूपी संतरे को निचोड़ने की मैं आपसे अच्छी प्रणाली जानता हूं और उससे मुझे रस भी ज्यादा मिलता है। मैं जानता हूं कि मैं मर नहीं सकता, अतः मुझे रस निकालने की हड़बड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है, अतः आराम से निचोड़ता हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं, स्त्री पुत्रादि तथा विषय संपत्ति का कोई बंधन नहीं है। अतः मैं समस्त नर नारियों से प्रेम कर सकता हूं। सभी मेरे लिए भगवत स्वरूप हैं। मनुष्य को भगवान समझकर उससे प्रेम करने में कितना आनंद है। अपने संतरे को इस प्रकार निचोड़कर देखिए, इससे आपको 10,000 गुना अधिक रस मिलेगा। रस की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी।
4: स्वामी जी और भी एक मजेदार घटना सुनाया करते थे। उन दिनों वे व्याख्यान देने में लगे हुए थे और केवल एक बैग साथ लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा करते रहते थे। विभिन्न स्थानों के लोगों में स्वामी जी के व्याख्यान सुनने का आग्रह होने पर भी उनकी सुख सुविधा पर ध्यान देना सर्वदा संभव नहीं हो पाता था। इसी समय एक बार वे मध्य पश्चिम के एक छोटे से नगर में व्याख्यान देने पहुंचे। उस समय वे बड़े ही थके हुए लग रहे थे और थोड़ा विश्राम कर लेना उनके लिए आवश्यक था। स्वागत समिति के सचिव ने उनके विश्राम के लिए एक छोटा सा अंधेरा कमरा दिखा दिया। कमरे में प्रविष्ट होकर स्वामी जी जो ही आराम कुर्सी पर बैठे, त्यों ही वो चरमराती हुई बीच में से टूट गई।
6: हे भगवान!
4: और स्वामी जी अपना संतुलन खोकर उसके भीतर गिर पड़े। बहुत कोशिश करने पर भी उनका शरीर उसमें से निकल नहीं पाया, बल्कि उन्होंने पाया कि अधिक हिलने डुलने पर कपड़े फट जाने तथा शरीर छिल जाने की आशंका है। अतः वे उसी असुविधाजनक अवस्था में ही निश्चेष्ट पड़े रहे। आखिरकार व्याख्यान का समय हो जाने पर जब सचिव महोदय ने आकर मंच पर चलने के लिए उन्हें पुकारा, स्वामी जी चलिए, श्रोतागण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा,
7: महाशय, यदि आप मेरी वर्तमान शोचनीय अवस्था से उद्धार न करें तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को इसी प्रकार इंतजार करते रहना होगा।
4: यह सुनकर सचिव शीघ्रता पूर्वक भीतर आए और स्वामी जी को खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद हंसी ठहाकों से कमरा गूंज उठा। स्वामी जी इस घटना का इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते थे कि हंसते हंसते उनके गुरु भाइयों के पेट में बल पड़ जाते थे।
3: एक अन्य घटना से स्वामी जी की महानता तथा मानव जाति के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा व सहानुभूति अभिव्यक्त हो उठी थी। अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में कई बार उन्हें भ्रमवश नीग्रो समझ लिया जाता था। एक बार उसी अंचल में ट्रेन से उतरने पर उनका बड़ा भव्य स्वागत होते देखकर एक नीग्रो कुली उनके पास आकर बोला, मैंने सुना है कि आप हमारी जाति में एक महान व्यक्ति हुए हैं और आपके द्वारा नीग्रो समाज गौरवान्वित हुआ है। मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ। स्वामी जी ने बड़ी आत्मीयता पूर्वक उस रेलवे कुली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वे अपने प्रति नीग्रो लोगों के व्यवहार के और भी उदाहरण दिया करते थे और अपने को नीग्रो समझ लिए जाने पर जरा सा भी संकुचित या नाराज नहीं होते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि दक्षिण के किसी होटल वाले ने उन्हें नीग्रो समझकर होटल में घुसने ही नहीं दिया और अभद्रता पूर्वक प्रताड़ित कर दिया। तथापि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वे एक नीग्रो नहीं वरन भारतवासी हिंदू हैं। इसके बाद अन्यत्र आश्रय लेकर स्वामी जी ने उस नगर में बड़ा सुंदर भाषण दिया तथा अगले दिन का समाचार पत्र पढ़कर होटल वाले को अपनी भूल समझ में आई और उसने आकर क्षमा याचना की। यहाँ तक कि अमेरिका के उत्तरी भाग में भी उन्हें हजामत की दुकान से अपमानित होकर निकल आना पड़ा था। काफी काल बाद ये घटनाएं सुनने के बाद जब उनके एक पश्चिम देशीय शिष्य ने पूछा कि इन स्थानों पर उन्होंने क्यों नहीं अपना सही परिचय बता दिया, तो स्वामी जी रोष पूर्वक बोले, क्या कहा, दूसरों की कीमत पर बड़ा होना? मैं इसके लिए पृथ्वी पर नहीं आया।
4: रंग भेद पर आधारित श्रेष्ठता का दावा उन्होंने अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि ऐसा करने पर वे उसकी हंसी उड़ाते थे। उनका विश्वास था कि उनकी अपनी जाति के रक्त में विभिन्न धाराओं का सम्मिश्रण हुआ है। वे कहते थे,
2: यदि मुझे अपने गौर वर्ण आर्य पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पीत वर्ण मंगोल पूर्वजों पर मुझे और भी गर्व है, और मैं सर्वाधिक गर्वित हूं अपने कृष्ण वर्ण नीग्रो पूर्वजों के प्रति।
4: भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
0: उन्हें अपने शारीरिक गठन और विशेषतः अपने मंगोल जबड़े पर गर्व था, जिसे वे लक्ष्य सिद्धि के पथ में बुलडॉग जैसी दृढ़ता का परिचायक मानते थे। उनका विश्वास था कि मंगोल जाति की ये विशेषता आर्य जाति की सभी शाखा प्रशाखाओं में पर्याप्त हो चुकी है। इसी प्रसंग में एक दिन वे कह उठे थे, देखते नहीं ततार ही प्रत्येक जाति की प्राण शक्ति रूपी मदिरा है। वो सभी जातियों के रुधिर में बल और उद्यम संक्रमित करता है।
4: अपनी वाक्पटुता के फलस्वरूप वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके पास व्याख्यान के लिए असंख्य आमंत्रण आते थे। उन सभी को स्वीकार करना उनके समय तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव न था, तथापि जिन्हें वे स्वीकार कर लेते थे उनके फलस्वरूप उन्हें सप्ताह में 12-14 तक व्याख्यान देने पड़ते थे। इससे उनका शरीर मन काफी थक जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें लगता कि बुद्धि का भंडार मानो शून्य हो गया है और वे व्याख्यान के विषय तक ठीक नहीं कर पाते। वे सोचते, अब क्या करूंगा, कल क्या बोलूंगा। ऐसी चरम अवस्था में अप्रत्याशित रूप से दैवी सहायता आ पहुंचती। इसके फलस्वरूप रात में सो जाने पर मध्य रात्रि के समय उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई देती, जिसमें उन्हें अगले दिन के व्याख्यान का विषय वस्तु बता दिया जाता। कभी ये आवाज काफी दूर से आती प्रतीत होती, फिर क्रमशः निकट आती जाती, अथवा देखते कि वे बिस्तर पर लेटे हैं और कोई दूसरा समीप खड़ा होकर व्याख्यान दे रहा है, या फिर कभी दो आवाजें व्याख्यान के विषय पर तर्क वितर्क करती, जिससे उन्हें अगले दिन के लिए सामग्री प्राप्त हो जाती। इनमें से अधिकांश विषय उन्हें पहले से अज्ञात तथा नवीन प्रतीत होते। कभी कभी तो उस मकान में रहने वाले अन्य लोग भी ये वार्तालाप सुनकर अगले दिन पूछते, स्वामी जी कल रात आप किसके साथ इतने जोर जोर से बातें कर रहे थे। इस पर स्वामी जी मृदु हास्य के साथ दो चार ऐसी बातें कहकर टाल जाते कि प्रश्नकर्ता के मन में ये व्यापार और भी रहस्यमय हो उठता। ज्यादा पूछताछ करने पर वे व्याख्या करते हुए कहते,
2: अरे वो कुछ भी नहीं, स्वयं क्रिय मन की स्वकेंद्रिक क्रिया मात्र है। वही अपने को दो भागों में विभाजित करके उपदेश देती है, बातें करती है और विचार करती है। यह आत्मा की ही असीम शक्ति की परिचायक है। आत्मा की असीम संभावनाएं इसी रीति से निद्रा काल में अभिव्यक्त होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें कोई अलौकिक रहस्य नहीं है। इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं।
3: परंतु वार्तालाप के दौरान वे प्रायः इन सबको कोई महत्व नहीं देते या इसकी अलौकिकता को स्वीकार नहीं करते और युक्ति की सहायता से समझा देते कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया से ही ऐसा हो जाता है।
4: इन्हीं दिनों उनमें अलौकिक योग शक्तियों का भी स्फुरण हुआ था। मदाम काल्वे की घटना में हमें उसका परिचय मिल चुका है, परंतु सामान्यतः वे उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। जिन विरल अवसरों पर वे उसका प्रयोग करते उस समय कोई ना कोई विशेष कारण विद्यमान होता था। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि इच्छा हुई तो स्पर्श मात्र से ही वे दूसरों की जीवन गति में परिवर्तन ला सकते थे। कमरे में बैठे ही दूर का समाचार जान सकते थे और दूसरों के अंतर मन की बातें देख लेते थे। कई बार देखने में आया कि पूछने के पहले ही वे प्रश्नकर्ता की शंका जानकर उसका निवारण कर देते। दूसरों की ओर देखकर ही वे उसके विगत जीवन के रहस्यों को खोल सकते थे। शिकागो के एक धनाढ्य व्यक्ति योग की शक्तियों के विषय में संदेहवान थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी की हंसी उड़ाने के उद्देश्य से कहा,
8: महाशय आप जो कहते हैं वो यदि सत्य हो तो फिर मेरे मन के गठन तथा मेरे अतीत जीवन के बारे में कुछ बताइए।
4: स्वामी जी ने क्षण भर के लिए हिचकिचाने के बाद अपनी तीक्ष्ण दृष्टि इस प्रकार उनकी आंखों पर स्थिर कर दी कि वो दृष्टि अदम्य शक्ति के साथ उस व्यक्ति के देह मन को भेदती हुई उनकी जीवात्मा तक पहुंचने लगी। वे सज्जन घबराकर कह उठे,
8: स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं, लगता है मानो आप मेरी पूरी आत्मा को मत रहे हैं और मेरे जीवन के सारे गोपनीय रहस्य तैरते हुए ऊपर आ रहे हैं।
4: ऐसी शक्तियों के अधिकारी होकर भी वे उनका दुरुपयोग नहीं करते थे और ना ही उन्हें आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक मानते थे।
3: इसके फलस्वरूप स्वामी जी के पास आने वाला व्यक्ति आत्म उन्नति तथा धर्मानुभूति के पथ की ही जानकारी पाता और जीवन में एक नवीन प्रेरणा की उपलब्धि करता। उन दिनों वे मानो बाकी सब कुछ भूलकर अमेरिका की आध्यात्म चेतना को जगाने के कार्य में ही विशेष रूप से लगे हुए थे। अमेरिका की जनता भी उन्हें इसी दृष्टि से देखती थी। उनके लिए वे साधु थे, महापुरुष थे और अमेरिका को भारत का श्रेष्ठतम एवं मंगलमय अवदान थे। इसीलिए भारत के इन वरद पुत्र को अमेरिका के समाज ने अतीव आत्मीय के समान अपना लिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, जिंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी प्रातःकालीन सभा कल सुबह 7 बजे आरंभ होगी। इस सभा में आप सुनेंगे जीवन सौरभ अक्षय निधि, उसके बाद भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुबह 7:15 पर। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में कल हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी महादेव विनायक रानाडे के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में कल दादी नानी की कहानियां प्रसारित होंगी। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम का विषय होगा साइबर क्राइम, जानकारी देंगे शिवेंद्र कुंभकार और इनसे बातचीत करेंगी रानी रायकवार। 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, इस कार्यक्रम में कल हम भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनेंगे, जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे देश के संस्थान के अंतर्गत हम भारतीय थल सेना पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। 10:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम कल समर्पित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय के जीवन पर। और सुबह 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन में कल हम मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं, अब हमारी संध्याकालीन सेवा संपन्न होती है। कल सुबह 7 बजे हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।